लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को

प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजादी रेडियो है। दोस्तों, छोटी छोटी दैनिक प्रगति समय के साथ बड़े परिणाम देती है। मतलब हर रोज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको एक दिन बहुत आगे तक लेकर जाएगा। अपने आप को परफेक्ट समझना सबसे बड़ी गलती है, इसलिए थोड़ा सा खुद को रोज चेंज करना है, बस थोड़ा सा ही करना है। 1% मात्र, 1% भी बदलाव अपनी सोच में लेकर आएंगे तो आप वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं, जिसका कभी आप ख्वाब देखते हैं, जो ख्वाब कभी कभी लगता है कि टूट जाएगा, शायद ये सच नहीं हो पाएगा। लेकिन सच ये है दोस्तों कि छोटा छोटा सा भी बदलाव करेंगे, छोटा सा इंप्रूवमेंट भी लेकर आएंगे। बुरी आदतों को एक साथ नहीं खत्म कर सकते, थोड़ी थोड़ी सी भी खत्म करेंगे तो एक दिन पूरी खत्म हो जाएंगी। बुरी आदतें बुरी संगत की वजह से होती हैं। पहले संगत को खत्म करना शुरू कीजिए, फिर वो आदतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। अपने परिजनों को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए। अपने काम में इंप्रूवमेंट लेकर आइए। किसी भी कंपनी के कोई भी ओनर्स होते हैं, कोई भी मालिक लोग होते हैं, वो सब जानते हैं, वो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन सबकी बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। कंपनी के लोग जो बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, वो कहते हैं हमें बेहतर आदमी नहीं मिलता काम करने के लिए, और हम कहते हैं कि हमें काम नहीं मिलता। मतलब क्या है? बीच में एक गैप है। हम आज भी उस डॉक्टर को ज्यादा पैसा देना बेहतर समझते हैं जो एक्सपर्ट है, जो स्पेशलिस्ट है। तो क्या हम अपने काम के स्पेशलिस्ट हैं? जो भी व्यक्ति स्पेशलिस्ट होता है उसको ज्यादा काम और ज्यादा दाम हमेशा मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे देश के जो धुरंधर लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे YouTube, Google, उन सब के जो हेड हैं, वो हमारे देश के बहुत दिमागदार लोग बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उनको ऐसे ऐसे पैकेजेस मिलते हैं कि लोग सोचते ही रह जाते हैं। रीजन है वो अपने आप को हर रोज थोड़ा सही सही पर इम्प्रूव करते हैं। हम जानते हैं कि हम शायद वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए था, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि शायद हम वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। ऐसी ही बातों के साथ सुनते रहिए सुभारती आजादी रेडियो। और हाँ, आपके मन में जो विचार आते हैं उमड़ घुमड़ कर 9639012111 पर ऑडियो वीडियो में भेज दीजिए रिकॉर्ड करके।

गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कृतज्ञता खुशी का सबसे सरल रास्ता है। लाभ मानसिक शांति और सकारात्मक सोच बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, हमें थैंकफुल होना है कुदरत के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, या हस्बैंड के लिए, या माता पिता के लिए, या उन दोस्तों के लिए, या उन ओनर्स के लिए, उन मैनेजर्स के लिए, जो लोग भी आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके लिए थैंकफुल रहिए। यही सबसे बड़ा सूत्र है जिंदगी में खुश रहने का और आगे बढ़ने का। छोटी छोटी बातों में उलझकर मत फंस जाइए, वरना वहीं सड़ते रह जाएंगे हम। जी हां, जो खराब वातावरण है उससे ऊपर उठ जाइए, अपने आप को बेहतर इंसान बनाइए, तभी आप उस बेहतर जगह पहुंच पाएंगे। उन लोगों को अपनी जिंदगी में लेकर आइए जिन्होंने कुछ बड़ा हासिल किया है, जो जिंदगी में लगातार ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। कुछ तो वो ऐसा करते हैं जो हम नहीं कर पाते, इसीलिए हर रोज थोड़ा ही सही इंप्रूव कीजिए और थैंकफुल बनिए।

ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।

गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। हर सुबह ये तय कीजिए कि आज शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करेंगे। क्या लाभ होगा इससे? ऊर्जा सकारात्मक होगी और सही दिशा में लगती चली जाएगी, एक दिशा में लगती चली जाएगी, और आपकी जो एनर्जी है, आपके जो पॉजिटिव विचार हैं, जब वो एक दिशा में काम करेंगे, उनका एकमात्र एक टारगेट होगा, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हर सुबह उठकर बहुत से लोग नेगेटिव, ये कमी वो कमी, बस उनको कमियां नजर आती हैं। दोस्तों, नजरिया बदलने की जरूरत है। जब बदलेंगे नजरिया तो बाहर नजारे बदल जाएंगे। इसी देश में लोग तरक्की कर रहे हैं, इसी जगह पर, इसी परिस्थिति में लोग आगे बढ़ रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए। खुद से प्यार कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए, नजारों से, कुदरत से प्यार कीजिए, अपने काम से प्यार कीजिए दोस्तों, और आप तरक्की जरूर करेंगे। ये पहला सूत्र है। गुड मॉर्निंग।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्या आप अपने काम से प्यार करते हैं या आपका काम कई बार आपको बोझ जैसा लगने लगता है? अगर ऐसा है तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। अगर परिस्थितियों की वजह से भी आज किसी काम में आप फंसे हुए हैं और आप उसमें बेहतर करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी दोस्तों आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। जिस काम से आपका परिवार चलता है, आप खाना खाते हैं, आपके बच्चे जिंदगी जीते, आपके माता पिता को आप सुख सुविधाएं, भोजन इत्यादि देते हैं, वो काम सबसे जरूरी है, उससे प्यार करना शुरू कीजिए। चाणक्य भी कहते हैं कि जो इंसान अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो फिर काम उससे मोहब्बत करता है। याद रखिए, अगर आप किसी भी काम को काम की तरह से करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे और आप किसी भी काम में डूब जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना वक्त बीत गया। यही कारण है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन या नेता अभिनेता लगातार दिन रात काम करते रहते हैं और उन्हें वो काम काम नहीं लगता। इसीलिए दोस्तों, आप जिस भी काम को करते हैं, जो भी काम में आप हैं, उससे प्यार करना शुरू करेंगे, आप 2400 घंटे में बदलाव देखेंगे अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, और आप तरक्की की राह पर चल पड़ेंगे और शायद फिर जो आप करना चाहते थे आप उस मुकाम तक भी पहुंच पाए। गुड मॉर्निंग, सुनते रहिए सुभारती आजादी रेडियो।

गुड मॉर्निंग, सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर मैं हूं वास्तु कृष्ण, आपका स्वागत करता हूं। गलतियां असफलता नहीं, सीखने की फीस होती हैं। डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप गलतियों से डर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे मेरा दोस्त, फंस जाएंगे आप। ये नहीं करना है, गलतियों से डरिए मत। देखिए, गलतियां जब हम करते हैं, अगर हम कहीं नौकरी करते हैं, कोई गलती हो गई, हमारे जो बॉस या मैनेजर्स होते हैं वो धमका देंगे, डांट देंगे, घर में माता पिता यानी जो भी हमसे बड़ा होगा वो हमको डांट सकता है, हमको उसी का डर लगा रहता है। इसी वजह से हम गलतियां नहीं करते, हम कोई नया काम नहीं करना चाहते कि गलती हो जाएगी तो डांट पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, गलतियां सीखने की फीस होती है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? अगर गलतियां नहीं करते तो बल्ब कैसे बनता, नए नए आविष्कार कैसे होते? इसीलिए दोस्तों, गलतियां करने से मत डरिए, आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए और आगे लगातार बढ़ते चले जाइए। दो फायदे होंगे आपको, एक तो आपके भीतर से वो डर निकल जाएगा, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होगा कि आप जहां खड़े हो जाएंगे लोग आपकी तरफ देखेंगे। फिर

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: Subharti Cancer Hospital. यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा और हमारा एक खास कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम हर परिवार में गूंजना चाहिए, सुना जाना चाहिए, आपको इसे समझना चाहिए। इस पुस्तक के लेखक कोई साधारण या आम इंसान नहीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया इस राष्ट्र की सेवा भाव के लिए, जो हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें संस्कारों का ध्यान देना चाहिए। आज के समय में युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अत्यधिक मोबाइल देखना, नशे की तरफ ज्यादा ललक होना या ज्यादा उस चक्कर में पड़ जाना, गलत रास्तों पर चल निकलना। अगर हम अपने बच्चों को ठीक प्रकार से संस्कार देंगे या उन्हें देश के प्रति जिम्मेदारियों का भाव समझाएंगे तो बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। भारत क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सनातन क्या है, ये सब कुछ अगर बच्चों को सिखाएंगे बचपन से ही तो बच्चे कभी गलत रास्तों पर नहीं जा सकते। सबसे सही उम्र किसी बच्चे को संस्कार देने की होती है बचपन, जब वो आपकी बात सुनता है। जब एक बच्चे के लिए उसके माता पिता उसके हीरो से कम नहीं होते, जब बच्चा अपने माँ बाप से हर बात शेयर करता है, वही सबसे सही उम्र होती है अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो माता पिता के लिए भी जरूरी है ये पुस्तक और ये कार्यक्रम, और हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए जरूरी है। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र चेतना में।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं वास्तु कृष्णा। भारत और भारत की संस्कृति, दोस्तों ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, जिसका आधार है राष्ट्र अनुभूति। किताब के लेखक यानी परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको समझाते हैं भारत और भारतीय संस्कृति के बारे में। भारत दो शब्दों का समुच्चय होता है, भा और रत। यानी भा का अर्थ होता है प्रकाश और रत का अर्थ होता है लीन रहना। इस नाते भारत का अर्थ बनता है वो क्षेत्र जहाँ के निवासी सदा ज्ञान प्राप्ति में लीन रहते हैं, उस क्षेत्र को भारत कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भारत राष्ट्र की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति का वर्णन भी मिल जाता है। विष्णु पुराण में भारत वर्ष की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसा भूखंड जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वही भारतवर्ष है। आर्यवर्त, अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में भारत के लिए आर्यवर्त नाम का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं इसका आशय संपूर्ण भारत से लगाया गया है। के शताब्दियों तक भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग ही होता रहा। आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष में कब और कैसे परिवर्तित हुआ, इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। जैसे एक मत के अनुसार ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारतवर्ष कहा गया। दूसरा, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारत कहा गया। एक प्रसंग के अनुसार जिस क्षेत्र में राजा भरत की प्रजा रहती थी उस क्षेत्र को भारत कहा जाने लगा। भारत एक अति प्राचीन राष्ट्र के साथ साथ विश्व का मार्गदर्शक भी रहा है। भारत के मूल चरित्र को जो भाव प्रभावित करते हैं उनमें प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व भाव, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति परम निष्ठा और जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना, प्रत्येक विचार को सम्मान देना, प्रगतिशील दृष्टि प्रमुख है। यदि दार्शनिक आधार पर भारत के मूल चरित्र को परिभाषित करें तो वो सत्य,

सत्यम शिवम सुंदरम के महासूत्र से निहित है। जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सुंदर भी है। स्वागत है आपका सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में।

भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस कार्यक्रम का आधार है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है राष्ट्र अनुभूति, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सपना देखने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी किताब के माध्यम से हमें समझाते हैं भारतीय संस्कृति के विषय में। किसी क्षेत्र विशेष में विकसित जीवन पद्धति, दर्शन, चिंतन धारा, इतिहास, गौरवशाली अतीत, प्रेरणादायक प्रसंग और महापुरुषों के महान कृत्यों से परिभाषित होती है। संस्कृति को किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं बांधा जा सकता। भारतीय संस्कृति विश्व की महानतम और प्राचीनतम संस्कृति है। विश्व के इतिहास को देखें तो अन्य देशों की संस्कृतियां समय की धारा के साथ नष्ट होती चली गई, लेकिन समन्वयवादी दृष्टि के कारण भारतीय संस्कृति सदा स्थिर रही और समय की गति के साथ पहले से अधिक निखरती चली गई। भारतीय संस्कृति के समन्वय के अतिरिक्त दयालुता, उदारता, अहिंसा मूल भाव है। कभी कभी हम किसी भी भाव को असीमित एवं संपूर्ण समझने की भूल कर जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी भावों को सम्यक रूप से समझना है। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने सभी विचारों में सम्यकता का मिश्रण किया ताकि आमजन किसी भी भाव को संपूर्ण एवं असीमित समझकर उसके दुष्प्रभाव से हानि न उठाए। कुछ उदाहरण जिनसे आप शिक्षा ले सकते हैं, जैसे दयालुता। एक नदी के भीतर एक सन्यासी नहाने के लिए खड़े थे। उन्होंने देखा कि उसके पास से एक बिच्छू बहता चला जा रहा है। उसने बिच्छू को अपने हाथ से नदी के बाहर फेंकना चाहा। अपने स्वभाव के कारण बिच्छू का संपर्क जैसे ही सन्यासी व्यक्ति की हथेली पर हुआ, बिच्छू ने डंक मार दिया। मारे गए डंक की पीड़ा से उस सन्यासी के हाथ से वो बिच्छू पुनः पानी में गिर गया। अगली बार भी सन्यासी ने उस बिच्छू को बचाने के लिए वैसा ही किया। बिच्छू ने पुनः डंक मारा। बार बार ऐसा करता देख बाहर खड़े एक सामान्य जन द्वारा सन्यासी से पूछा गया कि जब ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है तो आप इसे बचाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? तब सन्यासी ने कहा, मेरा स्वभाव दया और दयालुता है एवं जब बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो भला मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? ये अत्यंत सुंदर उपदेश है, परंतु इस सिद्धांत का अनुपालन सम्यक रूप से किया जाना चाहिए। कुछ लोग जिनका स्वभाव ही दुष्टता पूर्ण हो, उनके प्रति दयालुता करने के स्थान पर उनसे बचना ही अच्छा है।

0: साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एंड हियर वी गो आरजे वंशी ने स्टूडियो है। हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे वंशी और लेकर हाजिर हूं आपके वाला प्रोग्राम नाम है जिसका सेहत सखी और संसार। टाइम की बात करें तो 9:07 और 11 जुलाई आज की तारीख। गुड वाली मॉर्निंग, गुड वाली वाइब, धूप निकल चुकी है और जो आपके आसपास थोड़ा बहुत पानी जमा हो गया था वो अब थोड़ा थोड़ा सूख गया है, मतलब थोड़ी सी राहत है, लेकिन गर्मी जनाब उतनी ही बरकरार है।

बारिश बरसी लेकिन गर्मी और उमस उतनी ही अभी है। बाकी आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में क्या है मौसम की अपडेट, बिल्कुल मुझसे साझा कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है 9639012111। फिलहाल मैं आपसे साझा करूंगी आज का फॉर्मूला ऑफ द डे। तो क्या कहता है आज का फॉर्मूला ऑफ द डे, सुनते हैं साथ में। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, यानी कि भविष्य की सफलता और सुकून आज के प्रयासों पर निर्भर करती है। आज का संघर्ष ही कल की राह को आसान और खूबसूरती से भर देता है, तो इसीलिए आज मेहनत

शुरुआत कर लेते हैं ना, तो कल तक वो काम ज़रूर आधा पहुंच जाता है ना, आधा हो जाता है, और जो भी मुश्किलें होती हैं आपके काम में वो आसान दिखाई पड़ती हैं। बाकी आपका आज का दिन शुभ और ऊर्जावान हो, इसी शुभकामना के साथ आज हम शुरू करेंगे अपना ये प्रोग्राम और ढेर सारी बातें आपसे करूंगी, हिस्ट्री ऑफ द डे आपसे साझा करूंगी, बताऊंगी डे स्पेशल भी और बताऊंगी कुछ और ऐसी ज़रूरी बातें जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। बाकी आपको हमारे पते पता है, जैसे कि आप जा सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर, आप जा सकते हैं मेटा पर, आप जा सकते हैं यूट्यूब पर और आप जा सकते हैं एक्स पर भी, सभी प्लेसेस पर हम आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। बाकी अगर आप आउट ऑफ रीच हैं हमसे तो बिल्कुल हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, आपको सर्च करना होगा प्ले स्टोर पर जाकर आज़ाद हिंद रेडियो, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। और एक छोटा सा ऐप है जो आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो हमसे खुद ब खुद जुड़ ही जाएंगे, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइशें, अपनी डेडिकेशंस बिल्कुल मुझ तक पहुंचा सकते हैं ऐप के माध्यम से भी। फिलहाल मैं आप तक पहुंचा रही हूं बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते जाइए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरी यानी आरजे वंशी के साथ, एंड यस गुड मॉर्निंग।

Once again, welcome back to Azad in Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. दोस्तों ढेर सारी बातें लेकर फिर से एक बार आपके पास हाजिर हूँ और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार 9:21 पूरे के पूरे और आज है 11 जुलाई। जी हाँ, अगर दिन की बात करें तो आज है शनिवार और कल है फाइनली रविवार। वैसे तो ये शनिवार भी बहुत लोगों का वीकेंड होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सिर्फ रविवार ही मिलता है और रविवार वाले दिन कितने सारे काम होते हैं। ओ माय गॉड, पूरे वीक का जो रोल आउट होके आ रखा होता है ना, वो संडे के ऊपर आ जाता है और संडे इतना भारी भरकम दिन गुजरता है, फिर ना तो कोई रेस्ट मिल पाता है ना ही कोई आराम मिल पाता है ना, मे टाइम तो बिल्कुल ही भूल जाइए। फिलहाल चलिए आज का मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है खास 11 आज की तारीख। तो आज के दिन हम

0: करना इसका उद्देश्य हो जाता है। और इस दिन की शुरुआत सन 1989 में की गई थी और की गई थी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। असल में 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी लगभग 5 अरब यानी के 5 बिलियन पहुंच गई थी, जिसने वैश्विक स्तर पर इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। बाकी इस साल यानी कि 2026 में इसकी जो थीम है वो है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप ये मुझसे साझा कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर है मेरा 9639012111। एक बार फिर से आपको इसकी थीम बता देती हूँ। इसकी थीम है रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर, यानी युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। बाकी और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूँगी सारी की सारी। बट मीन वाइल इंजॉय करेंगे बहुत ही प्यारा सा गाना, गाना फ्रॉम द मूवी पटियाला हाउस। आई होप आपको पसंद आएगा। उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते जाइए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: दिस इज समथिंग

0: क्या बात है बबलू भैया, एक और नई गाड़ी?
1: हाँ भैया, बस ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन आपको पता है कि हमारे मोहल्ले में अब टोटल 23 गाड़ियाँ हो चुकी हैं, है ना गर्व की बात?
0: गर्व की बात? अधिक गाड़ियों का मतलब है अधिक सड़कों का निर्माण करने की आवश्यकता, जिससे हवा, भूमि और जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, जो कि हमारी और प्रकृति दोनों की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
1: बात तो सही है राहुल भैया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं?
0: हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं।
2: क्या आप जानते हैं, हर साल साइकिल के उपयोग से लगभग 10 से 15 मिलियन टन ऑक्सीजन बचाई जा सकती है। साइकिल चलाना न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है, बल्कि हमारी ग्रह पृथ्वी के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। 5 किलोमीटर दूरी तक के सभी कामकाजों को साइकिल के द्वारा करने की कोशिश करें। देश को प्रदूषण से बचाने में बिल्कुल भी शर्म ना करें। स्टॉपिंग पॉल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन।
1: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM. सुन रहे हैं आप मेरे यानी आरजी वंशी के साथ. और टाइम की बात करें 9:52 हो गई हैं एज पर माई स्टूडियो क्लॉक. और 11 आज की तारीख है यानी कि 11 जुलाई. और दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सेहत सखी और संसार. ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और फिलहाल साझा कर रही हूँ आपसे कुछ ऐसी बातें जो आज के दिन को और भी ज़्यादा खास बना देती हैं. जैसे कि अभी हमने बात की विश्व जनसंख्या दिवस आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है. और वहीं आपको बता दूं कि सन 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और आज हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदी विकिपीडिया डे भी. यस, इंटरनेट पर हिंदी भाषा में ज्ञान का सबसे बड़ा और मुक्त महासागर इसको माना जाता है. और इसकी शुरुआत आज ही के दिन 2003 में की गई थी. हालांकि इसके पीछे क्या बात है बताऊंगी आपको सारी की सारी. असल में शुरुआती दौर में इस कंटेंट पर बहुत ज़्यादा कम था, मतलब कि ये जो कंटेंट था हिंदी भाषा में जो कंटेंट हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा कम था. लेकिन भारत में जैसे जैसे इंटरनेट की एक्सेस बढ़ने लगी वैसे वैसे स्वैच्छिक योगदानकर्ता भी आने लगे, यानी कि वॉलंटियर्स भी हमारे पास आने लगे. और उन्होंने इस चीज़ पर मेहनत की और आज हमारी इंडिया के पास इतना बड़ा विशाल ज्ञानकोश है हिंदी विकिपीडिया के रूप में, जहाँ पर आपको जो भी आप मदद मांगते हैं या सर्च करते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो आपको मिल जाता है. इसके माइलस्टोन्स क्या क्या हैं या फिर मैं कहूँ इसका विकास का सफ़रनामा क्या कहता है इसके बारे में आपको बताऊँगी. लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी है तो बिल्कुल आप मुझसे साझा कर सकते हैं. नंबर बहुत ही आसान सा है 9639012111. आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी बात मालूम है. इसके अलावा आपको कोई फरमाइश करनी है, किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है या फिर अपना मैसेज वाया मेरे थ्रू किसी और तक पहुंचाना है तो बिल्कुल इसी नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं. आप अगर आउट ऑफ रीच हैं यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी से तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे प्ले स्टोर पर जाकर, मोबाइल एप्लीकेशन से भी, और कहीं से भी हमको सुन सकते हैं और अपनी फरमाइशें भी सुना सकते हैं किसी दूसरे को भी. फिलहाल मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गाना, बहुत ही अच्छा गाना है. आई होप आपको पसंद आएगा. गाना फ्रॉम द मूवी माय नेम इज़ खान एंड अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़. आई होप आपको पसंद आएगा. फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू. कहीं मत जाइएगा दोस्तों, ऐसे ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM मेरे यानी आरजे वंशी के साथ.

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें लेकर हाजिर हूँ आपके पास और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। 10:07 और 11 आज की तारीख यानी कि 11 जुलाई आज की तारीख हो जाती है। अभी हमने गाने इंजॉय किया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। बाकी मैं अभी आपसे बातें कर रही थी कि आज ना हम हिंदी विकिपीडिया डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। आज ही के दिन इसकी शुरुआत की गई थी 11 जुलाई 2003 में। अगर बात की जाए इसकी इनिशियल फ़ेज़ की, तो पहले बहुत ज़्यादा हिंदी में कंटेंट कम मिलता था हम लोगों को, तो उसके बाद जैसे जैसे भारत में इंटरनेट एक्सेस करना शुरू हुआ और उसके बाद उसकी संख्या बढ़ने लगी लोगों की, तो वॉलंटियर्स की मेहनत से इस पर लेखों की संख्या को बढ़ाया गया और आज की डेट में ये एक विशाल ज्ञानकोश बन चुका है और आपकी मदद ये किसी भी संदर्भ में करने से पीछे नहीं हटता, है ना। और इसके कुछ माइलस्टोन्स हैं जिसके

बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम शुरुआत की बात करें, 11 जुलाई 2003 की बात करें, तो हिंदी विकिपीडिया का डोमेन लाइव किया गया था और इस पर पहला संपादन एडिट किया गया था। बाकी अगर इसके फर्स्ट फेज यानी कि पहले पड़ाव के बारे में बात करें, तो 25 जनवरी 2005 तक लेखों की संख्या है 1000 पार कर दी गई थी और शुरुआती सालों में देवनागरी टाइपिंग टूल्स की क्योंकि कमी थी तो इसी कारण रफ्तार थोड़ी सी धीमी चल रही थी। लेकिन जैसे ही हमारे पास देवनागरी टाइपिंग टूल्स आए तो रफ्तार पकड़ ली गई और 14 मार्च 2007 की बात करें तो लेखों की कुल संख्या हो गई थी 10,000 के भी पार, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहीं अगर बात करें हिंदी भाषा की और विकिपीडिया की, तो आपको बता दूं कि भारतीय भाषाओं में हिंदी विकिपीडिया नंबर 1 पर स्टैंड करता है। 8 सितंबर 2009 का आंकड़ा यही कहता है कि भारतीय जो भी भाषाएँ हैं जैसे कि तमिल, तेलुगु, मराठी, इन सबको पीछे छोड़कर हिंदी विकिपीडिया ने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया और सभी भारतीय भाषाओं को मैं कहना चाहूँगी पीछे छोड़ दिया। वहीं बात करें 14 सितंबर 2009 की, तो 50,000 यानी कि संयोग से हिंदी दिवस के दिन ही इस पर लेखों की संख्या 50,000 पार हो गई थी। तो ये हो जाती है हिंदी की खूबसूरती, ये हो जाती है हम भारतीयों की खूबसूरती। और अगर 2011 और 12 की बात करें तो गूगल ट्रांसलेशन और बेहतर देवनागरी इनपुट टूल्स की मदद से हिंदी विकिपीडिया में लगभग मैं कहूँगी 1,00,000 लेखों का आंकड़ा छू गया था। तो ये एक अपने आप में ही प्राउड मोमेंट हो जाती है, इजंट इट? अगर आप भी हिंदी प्रेमी हैं और हिंदी में लिखना, पढ़ना और याद करना जानते हैं, पसंद है, तो बिल्कुल आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर 9639012111 हो जाता है मेरा, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल कहानी मूवी का बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही इमोशनल टच वाला ये गाना इंजॉय करेंगे। उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यू ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें हैं मेरे पास और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार 10:32 और फिलहाल आपको रूबरू करा रही हूँ संसारिक बातों से। यस, क्या है खास आज का दिन के बारे में और हिस्ट्री ऑफ द डे क्या कहती है और साथ ही साथ आज का मौसम क्या कहता है ना। फिलहाल अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हस्तियां हैं और उनके जन्मदिन हैं। जैसे कि टुनटुन की बात करें, टुनटुन एक कैरेक्टर है लेकिन इनको टुनटुन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। उमा देवी खत्री की बात कर रही हूँ मैं। इनको इनका जो है आज ही के दिन जन्म हुआ था सन 1923 में। हिंदी सिनेमा की पहली कॉमेडियन थी, यस, पहली महिला कॉमेडियन मैं कहूँगी, और बेहतरीन प्लेबैक सिंगर भी रही और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी की एक अलग ही पहचान बना डाली थी। और इनका एक कैरेक्टर टुनटुन बड़ा ही फेमस हुआ था और हर किसी भी मूवी में आप अगर देखेंगे इनके इस कैरेक्टर को तो टुनटुन नाम से ज़्यादा ये प्रचलित हो गई थी और इसीलिए इनको इसके असली नाम से नहीं बल्कि टुनटुन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। वहीं अगर बात करें कुमार गौरव की तो इनका भी आज ही के दिन 1960 में जन्म हुआ था। ये महान दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार के बेटे हैं और बॉलीवुड अभिनेता भी हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म जो कि लव स्टोरी रही, जो कि 1981 में आई थी, इस पर रातों रात सफलता पाई थी और ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी और उसके बाद हर किसी की जबान पे सिर्फ कुमार गौरव का ही नाम था। इनकी कई सारी मूवीज़ हैं 90s की लेकिन सबसे जो हिट रही थी वो लव स्टोरी ही रही थी। आपको कौन सी मूवी इनकी अच्छी लगी थी मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। नंबर 9639012111 हो जाता है मेरा। वहीं अगर भारतीय टेलीविज़न और फिल्मों के एक लोकप्रिय अभिनेता के बारे में बात करें यानी कि मानव गोहिल की बात करें, इनका भी जन्म 1974 में हुआ था। इन्होंने कहानी घर घर की, शादी मुबारक और तेनाली रामा जैसे धारावाहिकों में काम किया है और बेहतरीन अपना प्रदर्शन दिया है। वहीं और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूँगी सारी की सारी, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, ऐसे ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ।

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है, देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता, वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh, I hate making love songs.
1: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।

एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। 10:50 हो गए हैं और इसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। दोस्तों, अभी हमने जाना कि आखिर आज किस किस के जन्मदिन थे, लेकिन अगर ग्लोबल पर्सनैलिटीज की बात करें तो आज है झुम्पा लहरी का जन्मदिन भी, जिनका बर्थ हुआ था 1967 में। असल में आपको बता देती हूँ कि ये प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी लेखिका हैं और इनकी किताबें जैसे कि इंटरप्रेटर ऑफ मेडलीज और द नेमेस्केक दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसी के साथ बात करें जॉर्जियो अरमानी की, तो इनका बर्थ हुआ था 1934 में। और आपको बता दूँ, ये असल में सबसे प्रभावशाली इटालियन फैशन डिज़ाइनर हैं और साथ ही साथ अरबपति कारोबारी, और इन्हें लग्जरी ब्रांड अरमानी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। इसी के साथ आपको बता दूं, जॉन क्विंकी एडम्स, इनका जन्म हुआ था 1787 में और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए के 6वें राष्ट्रपति बने थे। इसी के बाद 1996 में लेकर चलती हूँ आपको, इनका जो जन्म हुआ था अलेसिया कारा का, ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। और आपको बता दूँ, कनाडाई सिंगर गीतकार, और इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाया था जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था, हेयर एंड स्कार्स टू द ब्यूटीफुल, ये इसके लिए पॉपुलर हुई थी। फिलहाल ये गाना आपके लिए फ्रॉम द मूवी OMG।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब, रात का बासी पानी पैक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है, देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता। वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बच

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। सुन रहे हैं आप मेरे यानी RJ वंशी के साथ। और दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। टाइम की बात करें तो 11:14 और 11 जुलाई आज की तारीख। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में ढेर सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी समय है आपको लेकर जाने का आपकी रसोई घर में, यानी कि कुछ किचन हैक्स आपसे साझा करने वाली हूँ। दोस्तों, ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में ना सब्जियों का बड़ा खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कच्ची सब्जियाँ बहुत जल्दी से सड़ जाती हैं। अगर आप उसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख देते हैं तो भी वो एक्स्ट्रा नमी से ख़राब हो जाती हैं जल्दी से। तो आप किस तरीके से उनको अच्छे से स्टोर करके रख सकते ताकि वो लंबे समय तक ताज़ा रहें और बनाने की स्थिति में रहें। इस सीज़न में आपने देखा होगा, जो भी हरी मिर्चें होती हैं वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बड़ी जल्दी सड़ जाती हैं, और एक जैसे ही ख़राब होती है दूसरे को भी ख़राब करना शुरू कर देती है। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक है मेरे लिए कि आप किस तरीके से लंबे समय तक हरी मिर्चियों को ताज़ा रख सकते हैं। आपको क्या करना है, उनकी डंडियाँ जो स्टेम्स होती हैं उनको तोड़ देना है और उन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में रखना है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपको एयरटाइट कंटेनर के नीचे बिछाना होगा टिश्यू पेपर, यस, और उसके ऊपर आपको इन हरी मिर्चों को रखना होगा और उसके बाद डब्बा कर देना होगा बंद। याद रहे, एयरटाइट कंटेनर आपको लेना है। अगर उसमें नमी नहीं होगी डब्बे में तो उससे क्या होगा, हफ्तों हफ्तों तक ये जो आपकी मिर्चें हैं वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हरी मिर्चों का काम इतना ज़्यादा नहीं होता है। आप बस थोड़ी कुछ ही क्वांटिटी में उसको यूज़ करते हैं, तो इसीलिए उनको लंबे समय तक चलाना हमारी गृहणियों की ही जिम्मेदारी बन जाती है। तो एक छोटा सा हैक आपकी इन सब्जियों को प्रिजर्व करके रख सकता है। वहीं बात करें कि जब आप कुछ ग्रेवी टाइप बना रहे होते हैं और आपको पड़ती है ज़रूरत लहसुन की, यस, तो उसमें ना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको लगता है कि यार इसको छीलना कितना सर दर्द है ना, उसको छीलते आपके सर में बिल्कुल दर्द हो जाता है। लेकिन मेरे पास एक इसका भी हैक है कि आप किस तरीके से अपना टाइम जो है वो बचा सकती हैं। अगर बात की जाए लहसुन की कलियों को छीलने के संदर्भ में, तो आपको क्या करना है, इनकी कलियों को लेना है और 10 से 15 मिनट के लिए हल्के गुनगुने पानी में आपको भिगोकर रख देना है। लेकिन याद रहे, जितनी आपको चाहिए उतनी ही क्वांटिटी में आप उसको भिगोकर रखें, क्या पता बाद में ख़राब हो जाए, है ना। इसके बाद आपका जो छिलका है लहसुन का वो इतनी आसानी से उतर जाएगा बिना एफर्ट्स के, है ना, एफर्टलेसली वो उतरेगा और आपका काफ़ी समय बच जाएगा। बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा 10 से 15 मिनट। इस दौरान आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आज़ाद हिंद रेडियो भी सुन सकते हैं मेरे यानी आरजे वंशी के साथ, किसी गाने की फरमाइश भी कर सकते हैं। नंबर 9639012111 हो जाता है मेरा। फिलहाल ये गाना आपके लिए फ्रॉम द मूवी कुर्बान।

0: क्या बात है बबलू भैया, एक और नई गाड़ी?
1: हाँ भैया, बस ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन आपको पता है कि हमारे मोहल्ले में अब टोटल 23 गाड़ियाँ हो चुकी हैं, है ना गर्व की बात?
0: गर्व की बात? अधिक गाड़ियों का मतलब है अधिक सड़कों का निर्माण करने की आवश्यकता, जिससे हवा, भूमि और जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, जो कि हमारी और प्रकृति दोनों की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
1: बात तो सही है राहुल भैया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं?
0: हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं।
2: क्या आप जानते हैं हर साल साइकिल के उपयोग से लगभग 10 से 15 मिलियन टन ऑक्सीजन बचाई जा सकती है। साइकिल चलाना न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है, बल्कि हमारी ग्रह पृथ्वी के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। 5 किलोमीटर दूरी तक के सभी कामकाजों को साइकिल के द्वारा करने की कोशिश करें। देश को प्रदूषण से बचाने में बिल्कुल भी शर्म ना करें। स्टॉपिंग पॉल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन।
1: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें लेकर हाजिर हूँ आपके पास। प्रोग्राम चल रहा है सेहत, सखी और संसार। फिलहाल सखियों से बात कर रही हूँ और मेरे सखा जो हैं वो भी इस बात को सुन सकते हैं, क्योंकि अब ना जो किचन में जाना सिर्फ फीमेल्स का काम नहीं है। आपने देखा होगा कि मेल्स जा जाकर कितने अतरंगे और अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद हमें यही सुनने को मिलता है कि सीखो इससे कुछ। तो हम ज़रूर सीखने के लिए तत्पर हैं, लेकिन भागीदारी दोनों की हो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। फिलहाल आपको बता दूँ कि अगर जब भी आप कभी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं और उसमें नमक हो जाता है बहुत तेज़, तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक छोटा सा हैक है। आप उसमें उबले हुए आलू का एक छोटा सा टुकड़ा डाल सकते हैं, या फिर आप डाल सकते हैं गुथे हुए आटे की छोटी छोटी 2 से 3 कोलियां। ऐसा जब आप करेंगे तो जो एक्सेसिव नमक है वो उसको सोख लेगा और आप इसको परोसने से पहले निकाल दें, अन्यथा जो भी आपने अच्छी सी एक डिश बनाई होगी जब उसमें आएगी वो गोलियां छोटी छोटी तो मुंह का स्वाद ज़रूर ख़राब कर देंगी, तो उसको निकालना ना भूलें। फिलहाल और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूँगी सारी की सारी। और अभी ना कुछ देर में आपसे साझा करूँगी कि आप बहुत झटपट अगर आपको डेजर्ट रेसिपी बनानी है तो कैसे आप बना सकते हैं, क्या क्या उसके लिए सामान लगेगा। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी कि अभी लेकर बैठ जाइए आप नोटबुक और पेन, क्योंकि अभी मैं बताने वाली हूँ झटपट तैयार होने वाली एक बेहद ही खास डेजर्ट रेसिपी। फिलहाल टाइम की बात करें तो 11:33 और दिन की बात करें तो शनिवार 11 आज की तारीख। फिलहाल ये गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, मेरी यानी आरजे वंशी के साथ। टाइम की बात करें तो पूरे 11:46 हो गए हैं और दोस्तों मैं आपसे ढेर सारी बातें कर रही हूँ अबाउट योर रसोई घर। यस, चलिए किचन की तरफ तो लेकर जा ही चुकी हूँ और आई होप आपने पेन और पेपर तैयार करके रखा होगा क्योंकि मैं अभी बताने वाली हूँ आपको एक 5 मिनट लगभग इसमें लगेंगे क्विक डेजर्ट रेसिपी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास ना आपके घर में अनचक में बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं और आप खाना तो चलिए फिर भी कैसे भी बना ही लेते हैं, लेकिन बाद में जो वो डेजर्ट की कमी रह जाती है ना, उससे पूरे खाने का जो आपने माहौल पहले से ही सेट कर दिया होता है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सा लगता है। तो इसीलिए डेजर्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी भी लगता है कभी कभी, क्योंकि उससे खाना इनकम्प्लीट, कुछ कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, तो वो कुछ मीठा नहीं होने की वजह से कुछ खाली खाली सा लगने लगता है। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से क्विक डेजर्ट रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये पहले बता देती हूँ। आपको चाहिए ब्रेड स्लाइस, फ्रेश मलाई, या फिर आप उसकी प्लेस पर व्हिप्ड क्रीम भी ले सकते हैं। चीनी पाउडर आपको लेना है, कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा दूध आपको चाहिए। और आज जो हम डेजर्ट रेसिपी डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इंस्टेंट मलाई ब्रेड चमचम। जी, आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट मलाई ब्रेड चमचम। और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रेड के किनारों को काट लेना है और उन्हें कटोरी की मदद से गोल शेप में आप काट सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी मनचाही शेप दे सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन सबसे जो इजी रहता है वो कटोरी की मदद से अगर आप उसको कट कर लेते हैं तो बहुत कन्वीनियंटली हो जाता है और एफर्टलेसली हो जाता है। मलाई में आपको चीनी पाउडर डालना है और थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर देने हैं। और उसके बाद ये भी ध्यान आपको रखना है कि एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार आपको करना है, उसकी जो डेंसिटी है वो गाढ़ी होनी चाहिए। ब्रेड के गोल टुकड़े पर आपको उसको फैला देना है और ऊपर से दूसरी ब्रेड रखकर सैंडविच जैसा आपको उसको आकार दे देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसे हल्के से दूध में आपको डुबोना है और तुरंत आपको निकाल लेना है ताकि ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और ऊपर से नारियल के आप चूरे को डाल सकते हैं और उसको पिस्ते से गार्निश भी कर सकते हैं। और ये आपकी शानदार डेजर्ट रेसिपी बनकर तैयार है। बहुत ही आसान है, बच्चा भी इसको कर सकता है, ना ही इसमें फ्लेम की ज़रूरत है, ना ही इसमें मुझे लगता है कि नॉन फायर कुकिंग से हो जाएगा। और इसीलिए ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी मानी जाती है। आप चाहें तो अपने बच्चों के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर मौजूद रहें। फ़िलहाल गाना इंजॉय करेंगे साजन मूवी का, उसके बाद आई बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूँ ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार. बहुत सारी बातें तो आपसे कर ही रही हूँ, लेकिन गुड वाली नून अभी हो चुकी है. 12:03 हो गई हैं और मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे हैक्स जो आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा आसान बना लेते हैं ना, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं दिन भर बहुत सारा काम करती हैं. हालांकि कुछ लोगों को ऐसा दिखता नहीं है, उन्हें लगता है कि घर में क्या ही काम होता है, लेकिन घर में ना जाने कितने काम होते हैं. हर काम

भी बारिश का मौसम चल रहा है, उमस हो जाती है और ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं। मैदा की बात करें, दालों की बात करें, सूजी की बात करें, तो इससे बचने के लिए आप उनके डब्बों में 2 से 3 सूखी लाल मिर्च या फिर तेज पत्ता डाल सकते हैं। फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ समय हो चुका है कि मैं आप तक पहुँचा दूँ कुछ ऐसी बातें जिससे कि आप हमसे हो जाएं कनेक्ट। यस, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे नंबर से भी, 9639012111 हमारा नंबर हो जाता है। और इसी के साथ हमसे जुड़ सकते हैं आप सोशल हैंडल्स पर भी, यानी कि आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, हमें सर्च कर सकते हैं आज़ाद हिंद रेडियो के नाम से, बहुत ही आसानी से हम आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर कनेक्ट होकर के आप अपनी बात भी हम तक पहुँचा सकते हैं, DM कर सकते हैं, हमें कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी पोस्ट में, या फिर हमें टैग भी कर सकते हैं किसी जेन्युइन पोस्ट में। इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारे लोग ना हमें इंस्टाग्राम पर जब मैसेज करते हैं तो उनके यूज़र नेम थोड़े अटपटे से होते हैं और उनका रियल नाम हमें नहीं पता चल पाता है। तो जब भी आप कभी कोई ऐसा मैसेज भेजते हैं कि हमें वो ब्रॉडकास्ट करना है, तो आप प्लीज़ अपना रियल नाम ज़रूर हमें बताएं। ये जो अजीब सी आईडीज़ होती हैं उसको मैं

सर्च करना होगा आज़ाद हिंद रेडियो और उसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। और जब आप उस पर जाएंगे तो आप हमारे बाकी के तमाम जितने भी सोशल हैंडल्स हैं जहां पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं उनसे जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं डायरेक्ट मेटा पर भी और एक्स के साथ यूट्यूब पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज़ाद हिंद रेडियो आपको सर्च करना होगा। कोई बात आपको कहनी है, कोई बात किसी से कहलवानी है, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और किसी का बर्थडे है तो भी आप बता सकते हैं। कुछ पीस ऑफ राइटिंग करते हैं, कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करते हैं जो आपको लगता है कि बाकी लोगों के साथ भी शेयर किया जा सकता है या करना चाहिए, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके बिहाफ पर या आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम ऑन एयर कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो किसी जेन्युइन टॉपिक पर हो और उसमें किसी चीज़ का विरोधाभास ना हो। बाकी 12:21 हो गई हैं एज़ पर माई स्टूडियो क्लॉक और दिन आज का शनिवार, वीकेंड वाइब्स हैं। और आपका क्या वीकेंड का प्लान है ये भी आप मुझसे साझा कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए दोस्तों, खिलाड़ी मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूँ ही सुनते जाइए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: अम्मा मियाँ पान खा के तो मजा ही आ गया। अब एक काम करो, एक बढ़िया सी सिगरेट दे दो जिसे पी के कलेजे में ठंडक पड़ जाए।
1: अरे क्या बात है मियाँ, लगता है 20-25 लाख वाला बीमा करवा लिया है या लॉटरी लग गई है।
0: नहीं भैया, बीमा तो नहीं कराया है, पर काहे?
1: आप जिस तरह से तंबाकू और सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं उससे जल्द ही आपके घर में भयानक मेहमान आने वाले हैं।
0: भयानक मेहमान कैसे होते हैं भैया?
1: अरे जैसे कैंसर, कुमार, दमा रानी और टीबी।
2: जी हाँ, पान मसाला खाना व धूम्रपान करना जानलेवा है। इससे आपको कैंसर, अस्थमा, चर्म रोग, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग और टीबी हो सकता है। तो आज ही एक कदम बढ़ाएं अपनी सेहत की तरफ। आओ ये संकल्प करें, धूम्रपान को बंद करें।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों 12:46 हो गई हैं और इसी के साथ अभी हमने गाना एंजॉय किया, तेरी कलियों में ना रखेंगे कदम। और दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि हमें ना जब आप मिक्सी का उपयोग करते हैं तो कुछ चीज़ों की ना उसमें स्मेल रह जाती है और वो समय के साथ ना बदबू में तब्दील हो जाती है। तो आप किस तरीके से अपनी मिक्सी को साफ रख सकते हैं ताकि उसमें किसी भी प्रकार की बदबू ना आने पाए, इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा हैक है। अक्सर जब हम उसमें लहसुन या प्याज या बाकी के मसाले पीसते हैं तो उसमें महक रह ही जाती है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी लें, जार में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और आधा नींबू उसमें निचोड़ दें। इसके बाद मिक्सी को 10 सेकेंड के लिए चला दें, ठीक। इससे क्या होगा, एक तो जार बिल्कुल चमक उठेगा, अगर उसमें कोई भी स्टेन लगा होगा, दाग लगा होगा तो वो भी हट जाएगा और उसमें से बदबू भी गायब हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा हैक है। दूसरा, जब आप किचन के सिंक की सफाई करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 कप बेकिंग सोडा और आपको ये ड्रेन होल में डाल देना है सिंक के, और उसमें ऊपर से डालना है 1 कप सफ़ेद सिरका। 15 मिनट के बाद ऊपर से उबलता हुआ गर्म पानी आपको डाल देना है, इससे पाइपलाइन के जो भी बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और सिंक से बदबू भी भाग जाएगी, है ना। तो ये छोटे छोटे से हैक्स होते हैं जिनको आप अपना लेंगे तो एक तो खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है, पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, और दूसरा जब इनके रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं तो बस आप बाकी सखियों को भी सजेस्ट करते फिरते हैं ना। जब आप किटी में जाएंगी तो ये आप बाकी लोगों से भी साझा कर सकती हैं टिप्स। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि मेरा हो चला है जाने का वक्त, अभी अगले प्रोग्रामर का वक्त हो चला है आने का, और इस प्रोग्राम के बाद आप सुनेंगे वास्तु कृष्णा जी को और उनकी कुछ नई बातों को। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और यूं ही सुनते जाइए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जाते जाते बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए छोड़कर

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

जय हिंद, आप सभी का स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का नारा देने वाले सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखित ये पुस्तक राष्ट्र अनुभूति हमको सिखाती है कि सर्वप्रथम हमारा देश होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति किस प्रकार होनी चाहिए। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं या इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो एक बच्चे को या एक मनुष्य को जीवन में जितने संस्कारों की जरूरत पड़ती है वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। आज हम बात करते हैं चरित्र के बारे में। चरित्र क्या है? किताब के माध्यम से लेखक हमको समझाते हैं, सद्विचारों और सत्कर्मों का संगम ही चरित्र है जो हमारी इच्छाओं को नियंत्रित रखता है। जो लोग प्राणी मात्र के प्रति अपने भीतर संभाव रखते हैं और कुशल कर्म करते हैं उन्हीं को चरित्रवान कहा जाता है। चरित्र मानव जीवन की स्थायी निधि है। जीवन की सफलता का आधार मनुष्य का चरित्र ही है। उत्तम चरित्र जीवन को सही दिशा में प्रेरित करता है और स्वयं के साथ समाज के लिए भी उपयोगी बनता है। एक चरित्रवान व्यक्ति के लिए कुछ गुण बहुत ही आवश्यक हैं, जैसे सम्मान। माता पिता और वरिष्ठ जनों का सम्मान कीजिए। विनम्रता, विनम्र एवं मृदुभाषी रहिए। आत्मसंयम, गुस्सा, लालच और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। परोपकार, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहिए। दयालुता, निर्धनों और असहायों के प्रति करुणा का भाव रखिए। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं और समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए। अपने भीतर संवेदना के स्तर को उच्च रखेंगे तो सभी की पीड़ा स्वयं पीड़ा अनुभव होगी और सहयोगात्मक सहानुभूति का जन्म होगा। दूसरे की परेशानी को खुद की परेशानी समझ पाएंगे। सत्य, सत्य की परिभाषा बहुत ही व्यापक है। हमें सदा सत्य को ही ग्रहण करना चाहिए और सत्यनिष्ठ व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक नैतिक मूल्यों पर व्यवहारिक सहमति भी सत्य का पालन करना है। सदा सत्य बोलिए और सत्य को स्वीकार कीजिए। अहिंसा, किसी को भी शारीरिक, वाचसिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित न कीजिएगा। मितव्ययता, यानी सदैव सादे जीवन को ही अपनी जीवन शैली बनाएं। प्रदर्शन के भाव हमें व्ययी बना देते हैं जो उचित नहीं, अतः अनावश्यक व्यय न कीजिए। यानी दूसरों को दिखावे के चक्कर में अपनी जेब को हल्का न कीजिए। सत्यनिष्ठा, अपने कार्यों के प्रति सत्यनिष्ठा का भाव रखना चाहिए। आपके ओनर्स, आपके मैनेजर्स, आपके मालिक आपको देखें या ना देखें, आप अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा का भाव रखें, क्योंकि यही कार्य है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपके परिवार को पालता है और एक दिन आपको जीवन में तरक्की की राह पर लेकर जाएगा। पुस्तक के माध्यम से लेखक हमको समझाते हैं नैतिकता का भाव, सही और गलत के बीच अंतर करने की समझ और सही कार्य करने की प्रतिबद्धता अपने भीतर विकसित कीजिए। दृढ़ता, कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों और लक्ष्यों पर टिके रहिए। यानी मुसीबतें कितनी भी क्यों न हों,

जाता है तो हम किसी के साथ भी अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र चेतना में। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद।

0: साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स एक

रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सभी का स्वागत है। अब आप सुनेंगे राष्ट्र चेतना कार्यक्रम। जो आधारित है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखी पुस्तक राष्ट्र अनुभूति के ऊपर। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

राष्ट्र अनुभूति पुस्तक उन समस्त क्रांतिकारियों की पावन स्मृति को समर्पित है जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुबह भारतीय आजादी रेडियो पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। दोस्तों, भारत कभी विश्व गुरु कहलाता ही नहीं था, बल्कि वो था भी। भारत ने ही विश्व को तक्षशिला नाम से विश्वविद्यालय दिया, नालंदा विश्वविद्यालय दिया। केवल ये ही नहीं, भारत के वनों में स्थापित गुरुकुल विज्ञान और आध्यात्म की महानतम प्रयोगशालाएं बने। वहां से उदित आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक सूत्रों ने मानवीय सभ्यता को गति प्रदान की। आज हम विज्ञान और तकनीक को जिस शिखर पर देख रहे हैं, उसका आधार भारत के ही महान ज्ञानवत और तपोनिष्ठ मनीषियों ने रखा था। यहाँ के ऋषियों ने ही विश्व को एकम सद विप्रह बहुधा वदन्ति एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया।

प्रेम और शांति का भी संदेश भारत ने ही दिया। दूसरी ओर भारत एक समय विश्व की सबसे सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था थी। आज आप बड़े बड़े नेताओं के उद्बोधन में सुनते हैं कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। हम भारत में रहते हैं, लेकिन एक भारत हमारे भीतर भी रहता है। यदि हम उसको जागृत करने में सफल हो जाते हैं तो तय है कि हमारा प्रिय देश विश्व में शीर्ष पर होगा और पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा।

ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। इसका आधार है राष्ट्र अनुभूति नाम की पुस्तक, जिसके रचयिता, जिसके लेखक हैं सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी।

0: साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।

0: साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।

0: साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: जुकाम खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: जयकार शेरा वाली दा बोल सांची दरबार की। हाँ।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: जय हिंद वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। किसान भाइयों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बरसात के मौसम में गन्ने की फसल का ध्यान किस प्रकार से रखना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो रही है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। आज के कार्यक्रम में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चावड़दासू रागनी के साथ।

जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गन्ने की फसल का ध्यान कैसे रखें, कैसे बेहतर से बेहतर फसल हमारी हो जाए, वो भी बरसात के बारिश के मौसम में। सबसे जरूरी बात ये कि गन्ने की फसल अगर बुहेर है, यानी कि पहले साल वाली है, छोटी है, उसमें जल भराव नहीं होने देना। जल भराव मतलब दो दिन से ज्यादा पानी आपके खेत में खड़ा नहीं रहना चाहिए। अतिरिक्त जो पानी होता है उसको निकालने के लिए नालियां, ड्रेनेज आपको बनाना चाहिए, भरे वगैरह बनाकर रखने चाहिए, आपके खेत से बाहर पानी निकल जाए। एक सीमित मात्रा में ही पानी अगर आपके खेत में रहेगा वही ज्यादा ठीक है। वैसे इतनी भी बारिशें हमारे मेरठ के या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है कि खेतों में पानी डोला तोड़ भरा रह जाए, उतना भी नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर चिकनी मिट्टी होती है, वहां पर थोड़ा पानी भी ज्यादा दिन तक भरा रहता है। इसीलिए अगर दो तीन दिन से ज्यादा आपकी गन्ने की फसल में ये पानी भरा रहता है, ये पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, फिर धीरे धीरे उसमें बीमारियों का प्रकोप होगा और आपकी जो पैदावार है वो घट सकती है। इसीलिए बारिश का पानी बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं भरा रहना चाहिए। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो।

जय हिंद वंदे मातरम। ये मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो है। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि जो गन्ने की फसल होती है उसमें पानी बहुत ज्यादा दिनों तक भरा नहीं रहना चाहिए। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये गन्ना बेल्ट कहा जाता है, यहां पर गन्ने की फसल बहुत ज्यादा की जाती है। अब गन्ने की फसल में बहुत ज्यादा किसान भाई पानी की सिंचाई की व्यवस्था रखते हैं। सबको लगता है कि जितना ज्यादा पानी हमारे खेत में रहेगा फसल उतनी ही अच्छी रहेगी, जबकि ये सच नहीं है। फसलें चाहे पानी हो या यूरिया हो उतना ही लेती हैं जितना उनको जरूरत है, उससे ज्यादा ना फसल यूरिया डीएपी या फिर पानी कुछ नहीं लेती। उससे ज्यादा ओवर जो चीज होती है वो फसल को नुकसान पहुंचाती है। जैसे एक दूसरे की देखा देखी बहुत सारे किसान भाई यूरिया की जो बोरियां या कट्टे लेकर आते हैं और गन्ने की फसल में लगातार डालते ही रहते हैं। उनको लगता है जितना ज्यादा यूरिया डाल देंगे उतनी ही अच्छी गन्ने की फसल हो जाएगी, तो ये सच नहीं है, ठीक नहीं है। नाइट्रोजन होता है यूरिया के अंदर सबसे ज्यादा, और फसल को जितने नाइट्रोजन की जरूरत होती है वो उतना ग्रहण कर लेती है, बाकी सब हवा में या पानी में घुलकर उड़ जाता है, इधर उधर वेस्ट हो जाता है। और धीरे धीरे आपकी फसल को आदत पड़ती है ज्यादा से ज्यादा जो उर्वरक या यूरिया डीएपी डालने की, यानी आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमताएं कमजोर होती चली जाती हैं। सीधा सिंपल सा तरीका है, जितनी जमीन है उस हिसाब से नाप तोल कर आपको यूरिया डालना है। यूरिया की खपत भी कम हो इसके लिए आप समय समय पर अपने खेतों में ढेंचा की फसल को उगाकर उसकी जुताई कर दें, हरी खाद का वो काम करेगा, उससे भी आपकी बचत होने वाली है। गन्ने की फसल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर आपको कुछ कहना है तो नंबर है 9639012111।

0: शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: आज के इस कलयुग की सच्चाई को इस गीत के माध्यम से आप सभी के बीच लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ आप सुनेंगे और अमल करेंगे।

पहले के भाई राम लक्ष्मण जैसे होते थे, बड़े भाई छोटे भाइयों को अपने बेटों की तरह और छोटे भाई अपने बड़े भाइयों को पिता की तरह समझते थे। और आज इस कलयुग के भाई क्या करते हैं, सुनिए।

पहले श्रवण कुमार जैसे पुत्र अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर रखकर चारों धाम की यात्रा करवाते थे, और आज इस कलयुग के पुत्र अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। उन्हें अपने माता पिता को अपने साथ रखने में शर्म आती है।

जिस माँ ने रात रात भर जागकर और खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को अपने खून से सींचा, आज वही बच्चे उसे अपने साथ रखने में भी शर्माते हैं।

एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, लेकिन एक पिता ता उम्र उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने दिमाग में रखता है, और वही बच्चे उस पिता के साथ क्या व्यवहार करते हैं, आइए सुनते हैं।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: यह है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि बरसात के मौसम में गन्ने की फसल का ध्यान किस प्रकार रखें। इस मौसम में सबसे बड़ी जो समस्या किसान भाइयों के सामने खड़ी होती है वो होती है खरपतवार की, क्योंकि बारिश के मौसम में खेत अक्सर गीले रहते हैं, उसमें हम जाकर निराई गुड़ाई कर नहीं सकते तो खरपतवार बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं। बहुत ज्यादा किसान भाई अब ये तरीका अपनाते हैं कि जैसे ही धूप निकलती है वो स्प्रे कर देते हैं, चौड़ी पत्तेदार जो घास फूस होती है या खरपतवार होते हैं सबकी स्प्रे हो जाती है। तो पेड़ी की फसलों या बुहेर की फसलों अब सब ज्यादातर स्प्रे करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्प्रे अगर आप अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान आपकी गन्ने की फसल को भी झेलना पड़ेगा। इसका उदाहरण आप ये भी देख सकते हैं कि जिस खेत में आपने स्प्रे नहीं किया है उसका कलर कैसा है और जिसमें स्प्रे किया है वो हल्का हल्का पीला पड़ना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा स्प्रे के ऊपर भी निर्भर मत कीजिए, कोशिश कीजिए जब भी मौसम ठीक हो खरपतवारों को नियंत्रित कीजिए, उखाड़कर बाहर फेंक दीजिए या जुताई करवा दीजिए या जैसे भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हमारा मकसद होना चाहिए खरपतवार को उखाड़कर खेत से बाहर फेंकना। अपने खेत में अत्यधिक मात्रा में स्प्रे करते रहेंगे दवाइयों की जहरों की तो हमारी फसल को मिट्टी को यह नुकसान पहुंचाएगा।

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ जय हिंद।

0: और प्रिय श्रोता उस तस्वीर को लेकर राजा मनसेन राजमहल में पहुंच जाता है। दो चार दिन हो गए रहते सहते न राज दरबार में जावे न ठीक ढंग से रानी से बात करे। निराश से रहा नजर आए रानी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि महाराज क्या बात है, आप निराश क्यों है, न नहाते न खाते क्या कारण है। श्रोताओ एक ही रटन लगाए हुए कि हाय छोटू वाली हाय छोटू वाली, ये आवाज कानों में पड़ी। रानी नाग देख के समझदार थी जचगी कि तेरे पति के किसी औरत की खटक लागी और उसके वियोग में पागल हो चुका है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि महाराज मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकती, न मेरा कोई दायरा, लेकिन इन औरतों के चक्कर में आकर किन किन ऋषियों की मति भंग हुई। एक बात के द्वारा रानी नागदेव अपने पति राजा मनसेन को क्या सुझाव देती है भला।
1: न बोली हो और

मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो महापुरुष अपने आप को इस संसार में महान समझते थे, उनके साथ भी औरतों का क्या व्यवहार रहा? पहली कली में

हे महाराज आप एक राजा हो, राजा को एक एक कदम भूख भूख रखना चाहिए, आपके प्रजा के प्रति आपका कैसा स्नेह रहना चाहिए, आखिरी कली में किस तरह से रानी नाग देने क्या सुझाव दिया भला। ये रे रान दे रान दे क्यों गणी।

0: जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल की बात कर रहे हैं। अगर फसल गिर रही है, ढह रही है, तब आपको उसको बंधाई जरूर करनी होगी। अगर आपकी गन्ने की पेड़ी की फसल है तो बंधाई याद से कर दीजिएगा। और हाँ, सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिये। बरसात के मौसम में बहुत सारे कीट पतंगे, कीड़े मकौड़े, ततैया, मधुमक्खी इत्यादि हमारी गन्ने की फसलों में अपना घर बना लेते हैं। और बहुत ज्यादा ऐसी समाचार मिलते हैं कि सांप इत्यादि ऐसे जहरीले जो जानवर हैं या कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, ये सब उसमें हमला करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी गीले खेत में गन्ने की फसल की बंधाई के लिए जाएं, सुरक्षा का ध्यान रखें। लॉन्ग बूट्स आपको पहनने हैं, मजबूत वाले जूते पहनने, प्रॉपर कपड़े पहनने हैं, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, चेहरे पर मास्क, जो वो जाली वाला किसानों का मास्क आता है, वो होना चाहिए, हेलमेट का आपको प्रयोग करना है। याद रखिये, जान है तो जान है, अपनी सुरक्षा का सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए। और कभी भी खेतों पे अगर बड़ी फसल है आपकी, उसमें जब भी आप अंदर घुसे, अकेले आप नहीं होने चाहिए, जंगली जानवर भी हमला कर सकते हैं, इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए।
1: मन भावन संगीत हमारे दादा रिसाल बजाएंगे, दादा रिसाल बजाएंगे, कोशिंदर वैरिसी पाल।

शाम के वक्त वीरधन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन सेनापति बनेगा हमारी तरफ से मेहरबानों? फिर क्या था, करण के लिए कह दिया कि कल के युद्ध में करण को सेनापति बनाया जाएगा। मेहरबान

0: फिर क्या था साथियों, करण आज सेनापति बन गए और करण के अरमान थे कि मैं रणभूमि में लड़ाई लड़ूं और वो भी अर्जुन के सामने। मेहरबानों, करण ने कहा कि अगर कृष्ण जैसा मुझे सारथी मिल गया तो मैं पांडवों के छक्के छुड़ा दूंगा और अवश्य महाभारत के मैदान में दुर्योधन हमारी विजय होगी। मेहरबानों, कैसे भला?
1: समुंदर में किश्तियां डूब जाती हैं, बड़ी मुश्किल से वो उभर पाती हैं। पूछना हो तो पूछो गमे इन साहिलों से, निकली हुई घड़ी बड़ी मुश्किल से हाथ आती है।
0: लेकिन दुर्योधन, काश तेरी तस्वीर भी मेरे पास होती, फिर मैं तेरी यहां तलाश न करता। गर आते न तुम मेरी आवाज पर, सच कहता हूं कि मैं प्यास में न मरता और आज तेरी चाहत पूरी करूंगा। मैं करण का सारथी बनूंगा, लेकिन याद रखना कि करण अपनी जिद ना करने लगे, जिधर के लिए मैं सब को ले जाऊं, करण कहीं मेरी बेइज्जत ना कर दे। क्यों कि रिश्ते में मैं उसका मामा लगता हूं और मैं भी

0: लाखों जवान हूँ, करण तो मुझसे कहीं कम जानता है। मेहरबानों बला कैसे?
1: वास्तु कृष्ण के साथ
2: शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

साथियों, दुर्योधन सोच रहा था, न था मंजूर किस्मत को, न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इस गुलिस्तां में कमी क्या थी नजारों की। हमारे पास तो बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े सारथी हैं, और अब तो करण सेनापति बन गया और मनमानी करण की हो गई, मन चाहे सारथी मिल गई। मामा सल मेरे मेहरबान, ये खबर जब पांडवों में पहुंची तो भगवान कृष्ण चकरा जाते हैं, रहस्य में घूमने लगे। क्यों? करण के पास परशुराम के दिए हुए 5 बाण, वो ऐसी शक्ति थी कि जिनमें 5 पांडवों के प्राण थे। मेहरबानों, बस फिर तो श्री कृष्ण इस तरह से

0: साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: जुकाम खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद, हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा। सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहां जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित

0: साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। एचपीवी संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
1: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुफ्त? सच में? हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, एएनएम से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
1: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने? कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछू?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए

0: आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए। यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
1: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
0: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
0: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
1: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
0: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
0: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
1: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
0: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
1: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
0: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
1: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
0: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई हैं।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
0: बस यही चाहिए, सवाल रहे, जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
1: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
0: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
1: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यू विन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
6: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। साथियों, अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद होगा कि हम पहले भी टीबी यानी तपेदिक पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर इस विषय पर लौटे हैं। वजह कि टीबी आज भी हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। मैंने खुद कई बार गांवों में लोगों को कहते सुना है, अरे टीबी तो पहले हुआ करती थी, अब कहाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं, हम तो ठीक ठाक खाते पीते हैं, हमें टीबी कैसे हो सकती है। और कुछ लोग तो महीनों खांसी होने के बाद भी कहते रहते हैं, मौसम बदला है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या टीबी केवल कुछ लोगों को होती है? क्या हर खांसी साधारण होती है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसकी पहचान कैसे होगी? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, खासकर टीबी की जांच के बारे में। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब करवाने चाहिए, क्या सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, और अगर समय पर जांच हो जाए तो कैसे एक व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो हमेशा कठिन स्वास्थ्य विषयों को आसान भाषा में समझाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है टीकन भाभी।
1: धन्यवाद आरजे जी, और मेरे सभी श्रोता भाई बहनों को मेरा प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद। आरजे जी, आपने बिल्कुल सही कहा, टीबी पर बार बार बात करना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग लक्षण होने के बावजूद जांच नहीं करवाते। कई बार बीमारी सामने होती है लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। दरअसल आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक महिला की याद आ रही है, जिनकी कहानी मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे पड़ोस के गांव में सरला देवी नाम की एक महिला थी, सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पूरे इलाके में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लगभग 35 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, फिर एक दिन रिटायरमेंट हो गया। शुरुआत के कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा, हमेशा थकान बनी रहती थी। घर के लोग पूछते क्या हुआ तो वह हंसकर कह देती, अब उम्र हो गई है, पहले जैसी ताकत कहाँ रहेगी। कुछ समय बाद उनकी भूख कम होने लगी, कपड़े ढीले होने लगे क्योंकि वजन घट रहा था, शाम होते होते हल्का बुखार आने लगा, रात में पसीना भी आता था, फिर खांसी शुरू हुई। लेकिन उन्होंने तब भी गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें लगा कि अब नौकरी नहीं रही इसलिए शरीर सुस्त रहता है। परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उम्र का असर है। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए, फिर एक दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी, एक्सरे हुआ, बलगम की जाँच हुई और फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर पता चला कि सरला देवी को टीबी है। जब उन्होंने यह सुना तो सबसे पहले यही कहा, काश मैंने पहले जांच करवा ली होती।
0: सच कहूं टीकन भाभी, ये कहानी सुनकर लगता है कि सरला देवी अकेली नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लगातार कमजोरी, वजन घटना, बुखार या खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद यही वजह है कि बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। हम बार बार टीबी का नाम ले रहे हैं, लेकिन टीबी आखिर है क्या?
1: देखिए साथियों, टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु से होती है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हड्डियों, लिम्फ नोड्स, रीढ़, किडनी और दिमाग जैसे अन्य अंगों में भी हो सकती है। इसलिए टीबी को सिर्फ खांसी की बीमारी समझना सही नहीं है।
0: लेकिन भाभी, लोग तो टीबी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्या हर टीबी मरीज दूसरों में बीमारी फैलाता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। टीबी 2 तरह की हो सकती है, एक लेटेंट टीबी जिसमें शरीर में कीटाणु होते हैं लेकिन वे सक्रिय नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते और वह बीमारी नहीं फैलाता। दूसरी एक्टिव टीबी जिसमें कीटाणु सक्रिय होकर बीमारी पैदा करते हैं। फेफड़ों की एक्टिव टीबी दूसरों तक फैल सकती है,
0: तो ये फैलती कैसे है?
1: जब फेफड़ों की टीबी वाला व्यक्ति खांसता, छींकता, बोलता या गाता है तो हवा में बहुत छोटे छोटे कण फैलते हैं। इन्हें सांस के साथ अंदर लेने पर संक्रमण हो सकता है, खासकर बंद और कम हवादार जगहों में।
0: गांवों में लोग कहते हैं साथ खाने, हाथ मिलाने या बर्तन साझा करने से टीबी फैल जाती है।
1: यह पूरी तरह गलतफहमी है। टीबी हाथ मिलाने, साथ खाना खाने, बर्तन साझा करने, गले मिलने या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। इसलिए मरीज से दूरी नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत है।
0: ठीक है टीकन भाभी, लेकिन अब ये तो बता दो किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: अगर 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी रहे, बार बार बुखार आए, रात में पसीना आए, वजन घटे, भूख कम लगे, कमजोरी महसूस हो, सीने में दर्द हो या बलगम में खून आए, तो तुरंत टीबी की जांच करानी चाहिए।
0: टीकन भाभी, क्या भारत में आज भी टीबी बड़ी समस्या है?
1: भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2015 से 2024 के बीच नए टीबी मामलों में लगभग 21% और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी आई है। लेकिन आज भी कई लोग देर से जांच करवाते हैं, इसलिए जागरूकता और समय पर जांच बेहद जरूरी है।
2: क्या कुछ लोगों में टीबी का खतरा ज्यादा होता है?
1: जी हाँ, छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, HIV और डायबिटीज से प्रभावित लोगों, कुपोषित व्यक्तियों, भीड़ भाड़ वाले घरों में रहने वालों और टीबी मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और याद रखिए, अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच जरूरी है।
2: यानी अगर परिवार में किसी को टीबी है तो यह सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि बाकी सब ठीक हैं। पूरा परिवार सतर्क रहे, यही समझदारी है। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि उसे सचमुच टीबी है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग आज भी सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर कह देते हैं कि टीबी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी की पुष्टि हमेशा जांच के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार कहता है, लक्षण हो तो जांच करवाइए। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है।
2: तो सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है?
1: सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जांच है बलगम की जांच। जब किसी व्यक्ति को लगातार खांसी होती है तो उसके बलगम का नमूना लिया जाता है, फिर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि उसमें टीबी के जीवाणु मौजूद हैं या नहीं। यह जांच वर्षों से टीबी पहचानने में मदद करती रही है और आज भी महत्वपूर्ण है। आजकल लोग बनात और ट्रूएना जैसे नाम भी सुनते हैं। कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होते हैं।
2: आजकल लोग बनात और ट्रूएनेट जैसे नाम भी सुनते हैं। कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होते हैं।
1: बिल्कुल, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं। इनकी खासियत यह है कि ये काफी जल्दी परिणाम दे सकते हैं और केवल यह नहीं बताते कि टीबी है या नहीं, बल्कि कई मामलों में यह भी पता लगा सकते हैं कि कहीं बीमारी सामान्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी यानी ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं है। यही जानकारी डॉक्टरों को सही इलाज चुनने में बहुत मदद करती है। आज देश भर में ऐसी जांच सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि लोगों को समय पर सही निदान मिल सके।
2: और एक्सरे की क्या भूमिका होती है? क्योंकि जब भी कोई लंबे समय तक खांसता है, डॉक्टर अक्सर छाती का एक्सरे लिख देते हैं।
1: बिल्कुल सही, छाती का एक्सरे टीबी की पहचान में बहुत उपयोगी है। कई बार स्क्रीनिंग के दौरान एक्सरे में ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं जो टीबी की ओर संकेत करते हैं, फिर डॉक्टर आगे की पुष्टि के लिए अन्य जांच करवाते हैं। यानी एक्सरे बीमारी की ओर इशारा करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। और अगर डॉक्टर को संदेह हो कि मरीज को दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है, तब और भी विशेष जांचें की जाती हैं, जैसे कल्चर और दवा संवेदनशीलता का टेस्ट। इनसे यह पता चलता है कि कौन सी दवाएं मरीज पर प्रभावी होंगी और इलाज किस तरह से आगे बढ़ाया जाए।
2: साथियों, बात बिल्कुल साफ है। अनुमान नहीं, जांच जरूरी है। खांसी हो तो घरेलू नुस्खों में महीनों न उलझें, बल्कि सही समय पर जांच करवाएं।
0: खांसी हो लगातार तो मत करना इंतजार, समय पर जांच कराओ, टीबी को दूर भगाओ, सेहत सही लाभ कई।
2: टीकन भाभी, एक और बात जानना चाहूँगा, क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की जांच करती है जो खुद अस्पताल पहुँचते हैं?
1: नहीं, अब टीबी नियंत्रण का तरीका काफी आगे बढ़ चुका है। पहले ज्यादातर मामलों में लोग खुद स्वास्थ्य केंद्र आते थे, लक्षण बताते थे और फिर उनकी जांच होती थी। इसे हम पैसिव केस फाइंडिंग कहते हैं, लेकिन आज केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जाता, अब एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी खुद समुदाय तक पहुँचते हैं, गाँवों, बस्तियों, दूर दराज क्षेत्रों और जोखिम वाले समूहों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि जो लोग किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते उनकी बीमारी भी समय रहते पकड़ी जा सके।
2: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि खुद लोगों तक पहुंच रही हैं।
1: बिल्कुल, इसी सोच के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करोड़ों संवेदनशील और जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लाखों नए मरीजों की पहचान हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारी जल्दी पकड़ी जा रही है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल रहा है।
2: टीकन भाभी, मान लीजिए घर में किसी एक सदस्य को टीबी हो गई, तब परिवार को क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि इलाज तो मरीज करा रहा है, बाकी लोगों को क्या जरूरत है।
1: यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो बाकी सदस्यों की भी जांच करवाना बेहद जरूरी है। इसे संपर्क जांच या कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग कहा जाता है, क्योंकि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, दिन रात एक ही घर में समय बिताते हैं, उनके संपर्क में टीबी के जीवाणु आने की संभावना अधिक होती है, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों की जांच जरूर होनी चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में एक व्यक्ति को टीबी तो पूरे परिवार की जांच जरूरी। यह छोटा सा कदम बीमारी को फैलने से रोक सकता है और कई लोगों की जान बचा सकता है।
2: लेकिन टीकन भाभी, मुझे लगता है कि टीबी की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज भी डर और शर्म है। कई लोग बीमारी छिपाते हैं, जांच नहीं कराते और दूसरों को भी नहीं बताते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, टीबी का जीवाणु जितना खतरनाक नहीं है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ा सामाजिक डर बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, लोग दूरी बना लेंगे, रिश्तों पर असर पड़ेगा, लेकिन सच यह है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं है, यह कोई पाप नहीं है, यह कोई चरित्र की कमी नहीं है, यह एक सामान्य चिकित्सकीय बीमारी है जिसका इलाज उपलब्ध है और लाखों लोग हर साल पूरी तरह ठीक भी होते हैं। इसलिए बीमारी छिपाने की बजाय उसका सामना करना ज्यादा समझदारी है। समय पर जांच न कराने का नुकसान सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समुदाय को हो सकता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो साथियों, आज की पूरी चर्चा से हम क्या सीख लेकर जा रहे हैं?
1: मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता 6 बातें हमेशा याद रखें। पहली, अगर खांसी 2 सप्ताह से ज्यादा रहे तो जांच जरूर कराएं। दूसरी, टीबी हवा से फैलती है, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं। तीसरी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच और इलाज मुफ्त उपलब्ध है। चौथी, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो परिवार के बाकी सदस्यों की भी जांच कराएं। और पांचवी, टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि इलाज में परिवार और समुदाय का साथ बहुत मायने रखता है।
2: और मैं इसमें एक छठीन बात जोड़ना चाहूँगा। शुरुआत में आपने सरला देवी की कहानी सुनाई थी, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि थकान उम्र की वजह से है, उन्होंने सोचा कि कमजोरी सामान्य बात है, उन्होंने सोचा कि खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। इसलिए अगर आपका शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, समय पर जांच ही सबसे बड़ा बचाव है। तो आइए कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर सेहत की शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: खांसी रहे दो हफ्ते से पार, जांच कराना है समझदार। टीबी हरेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करके ही रुकेंगे।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: आने वाली पीढ़ी है अगर स्वस्थ बनानी, तो आज ही बंद करो पर्यावरण की हानि। एक पौधा अपने हाथों से लगाओ, इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाओ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820026235 మ్యాచ్ టచ్ ఛా.

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: 90.0 FM पर।
1: मैम HPV वैक्सीन के बारे में आपने जानकारी देना चाहिए।
2: ठीक है, HPV वैक्सीन अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है गवर्नमेंट की तरफ, फ्री में लगवा देते हैं। 14 साल की लड़कियों को लगते हैं अभी तो। शुरुआत में गवर्नमेंट में ऐसे शुरू किया है, आशा करते हैं कि आगे जाके और भी बच्चों को लग जाए।
1: मैम कुछ तरीके के मिथ भी है इसको लेकर, जैसे निशान हो रहे हैं या बुखार हो रहा है, तो क्या इनको साइड इफेक्ट में देखा जाएगा या ये नॉर्मल है?
2: ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट में नहीं है। और इनकी एक तो अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीन बहुत महंगा है, अगर आप प्राइवेट में लगाने चाहते हो तो बहुत महंगा वैक्सीन है। और उसमें भी वर्ल्ड में, अमेरिका में और बाहर के देशों में भी जो वैक्सीन लगाया जाता है उसी वैक्सीन गवर्नमेंट के थ्रू दे देते हैं, फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में दे देते हैं।
1: उद्देश्य क्या है मैम ये महिलाओं को वैक्सीन लग रही है?
2: ये HPV वैक्सीन से कैंसर जो होती है उसकी रोक लेती है, मतलब उसको प्रिवेंट करते हैं, जो जैसे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैला जाते हैं जिस बीमारियां, वो होने से बचा देते इस वैक्सीन।
1: आज हम जहाँ सेंटर पे आए हुए हैं, यहाँ पर किस समय से किस समय तक महिलाएं या लड़कियां आ सकती हैं HPV वैक्सीन की जानकारी लेने के लिए या उसको लगवाने के लिए, उसके बारे में बता दें एड्रेस।
2: ये हमारी सूरज कुंड की पब्लिक हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे हमारी मेडिकल कॉलेज की भी अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है, दोनों यहीं पे जुड़ा हुआ है, सूरज कुंड में ही है। यहाँ पे आप 9 बजे से 1 बजे से आ सकते हो जानकारी लेने के लिए, कभी भी आप आ जाए, अच्छे से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी वैक्सीनेशन वाला सेशन होती है उसी सेशन में वैक्सीन लग भी जाएंगे।
1: थैंक यू सो मच मैम, बात करें।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: स्मार्ट एनजीओ के तत्वाधान में चल रहे कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी के अंतर्गत टीबी की जानकारी के साथ अब आप सुनेंगे डॉक्टर अंकुर त्यागी जी को आरजे पंकज के साथ आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर।
1: टीबी एक ऐसी बीमारी है जो अभी इस आधुनिक युग में नहीं, प्राचीन काल से टीबी चलती आ रही है। और टीबी का जो सबसे मेन कोज है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है और जिस समय टीबी होती है उसे कुछ लक्षण होते हैं जो मरीज को महसूस होते हैं, परिवार को भी दिखाई देते हैं, जैसे कि वजन कम हो जाना, बुखार आना, भूख कम लगना, शाम के समय टेम्परेचर बने रहना और शरीर में कहीं भी गांठें बन जाना या फिर खांसी में खून अथवा बलगम। ये शरीर के इस टीबी के लक्षण हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ये लक्षण नजर आते हैं या परिवार में किसी को लगता है कि एक व्यक्ति के अंदर ये लक्षण है तो वो निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर आकर अपने बलगम की जांच और एक्सरे करा सकता है। एक्सरे जिला अस्पताल में उपलब्ध है और ये पूर्णतया निःशुल्क है। जिस व्यक्ति को अगर कोई टीबी का इन्फेक्शन आता है तो उसको पूर्ण इलाज उसका निःशुल्क है और स्वास्थ्य केंद्रों पर आशा आंगनवाड़ी जो हमारी आशा कार्यकर्ता है उनके माध्यम से ये ट्रीटमेंट उनको देने का काम सरकार कर रही है। और ये जो ट्रीटमेंट है इसके साथ में एक पोषण पोटली और कुछ सहायता आर्थिक रूप से भी सरकार के द्वारा उस मरीज को की जाती है जो टीबी पॉजिटिव।
2: सर यहाँ पर हमारे सेंटर पर भी टीबी से संबंधित क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं और किस तरीके का इलाज चल रहा है उसके बारे में भी हम चाहेंगे आप थोड़ा बताएं।
1: पुलिस लाइन स्वास्थ्य केंद्र एक ट्यूबरकुलर यूनिट है जहाँ पर सभी प्रकार की टीबी की दवाई यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध है। बलगम की जांच निःशुल्क उपलब्ध है और अगर हम किसी मरीज का एक्सरे कराना चाहते हैं तो हम जिला अस्पताल में भेजकर उसका एक्सरे करा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है जिसको लगता है कि मुझे टीबी हो सकती है या खांसी आ रही है कोई, तो आता है, पर्चा बनाता है और पुलिस लाइन स्वास्थ्य केंद्र टीबी मुक्त भारत अभियान को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कार्य कर रहा है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना इतना कीमती समय देकर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और टीबी के प्रति आपसे भी हम कहना चाहेंगे खुद भी जागरूक बने और सभी को जागरूक भी बनाए। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज।

डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद भारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय NH58 सुभारतीपुरम मेरठ में।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

रंग रूप या वजन, इनको लेकर किसी का मजाक ना उड़ाएं। हर इंसान अपने आप में खास है। खूबसूरती दिल में होती है, दिखावे में नहीं। सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता नहीं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। बच्चों पर प्रेशर नहीं, उनका भरोसा बनिए। उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें खिलने दीजिए। स्ट्रेस फ्री बचपन, बेहतर भविष्य। तो बस सही समय पर सही तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, NH 58 सुभारतीपुरम मेरठ में।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और भाई देखिए, अपने शोज में तो मेरी यहां पर आपसे ढेर सारी बातें होती ही रहती हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़कर कहीं और बात करना चाहते हैं तो वो जगह हो सकती है हमारे सोशल हैंडल्स। सो अभी तक अगर आप हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर तो कनेक्ट हो जाइए। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको फेसबुक यानी कि मेटा पर भी मिल जाते हैं और इंस्टाग्राम पर भी चाहते हैं। यहां पर कनेक्ट होने से क्या होगा कि आप हमें कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव भेज पाएंगे, अपने पसंदीदा ट्रैक के लिए भी फरमाइश आप कर पाएंगे। सो जुड़ना क्यों नहीं है जब इतने सारे फायदे हैं। अभी जुड़िए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सुनसान सड़क, अकेलापन और एक अजनबी जो मदद मांग रहा है। आपका दिल पिघल जाता है। आप मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, पर क्या आप जानते हैं ये एक जाल हो सकता है। आजकल सुनसान रास्तों पर लूटपाट और अपराध के लिए अजनबी मदद का नाटक करते हैं। इंसानियत जरूरी है, पर आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। सुनसान जगह पर गाड़ी कभी ना रोकें। अपने शीशे और दरवाजे बंद रखें। अगर कोई मुसीबत में लगे तो सीधे पुलिस को फोन करें। सचेत रहें, सुरक्षित रहें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और इस वक्त अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कपिल, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। सर, स्वागत है आपका।
1: जय हिंद एंड थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके साथ में जो है इस पॉडकास्ट में बैठा हूं और अपने फैकल्टीज और अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ अच्छा यहां बता पाऊंगा।
0: सर, सबसे पहले आपके विजन के बारे में एंड आपके डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहेंगे।
1: जो हमारी विश्वविद्यालय है, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, उसकी कुछ कोर वैल्यूज हैं, जैसे शिक्षा, सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो सारी भावनाएं, सारी वैल्यूज जो है वो दिखती हैं, और बच्चों को इंजीनियरिंग के साथ में हमारी कल्चरल वैल्यूज को सिखाया जाता है, उनको संस्कार सिखाए जाते हैं, उनको सोसाइटी में भविष्य में इंटरमिंगल होना है वो चीज सिखाई जाती है। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ में हम तकनीकी जो शिक्षा है उसको हम बच्चों तक पहुंचाते हैं, बच्चे उसको ग्रहण कर और देश के मूल्यवान नागरिक बनकर समर्पित होते हैं। और इसी क्रम में बच्चों के साथ में हमारी फैकल्टी भी, हम हर साल उनके लिए कुछ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, और उन प्रोग्राम्स को करवाने के लिए जो इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, और जो इंडस्ट्री में उस टाइम पर जो चीजें चल रही होती हैं वो हमारे वो शिक्षकों को उनके ऊपर ट्रेन करते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है और जो एकेडमिक्स है उसके बीच में कोई गैप ना रहे, कोई अंतर ना रहे। और देखा जाए तो हमारे पास में अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल में अधिकतर सभी ब्रांचेस हैं। हम अगर शुरुआत करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो हमारे साथ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी कई सारे कंसंट्रेशन हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है पहला, दूसरा है बिग डेटा एनालिटिक्स, तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग, चौथा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कंप्यूटर साइंस के कंसंट्रेशन हैं। इसके साथ में हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मतलब एविएशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं, हमारे पास डिफेंस में कोर्सेज हैं, हमारे पास मास्टर्स में अधिकतर सारे कंसंट्रेशन हैं, वो चाहे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो मास्टर्स, चाहे कंप्यूटर साइंस में, अधिकतर सभी ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं। तो ये सब चीजें संगठित करती हैं एक अच्छी शिक्षा पद्धति को, और जो बच्चे उसको ग्रहण करते हैं और जिस चीज में उनकी रुचि होती है उसी में वो अपने आप को एडमिशन लेकर उस चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमने कई सारे इनिशिएटिव्स जो है वो

0: स्टार्ट किए हैं, जिसमें अभी हमने फिलहाल हमारी जो काउंसिल है, टेक्निकल काउंसिल है, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उससे हमने AICT आइडिया लैब जो होती है उसके लिए हमने ग्रांट लिया है। हमें AICT ने अप्रूवल दिया है और उसके ऊपर हमने कई करोड़ रुपए लगा के हमारी एक आइडिया लैब तैयार हुई है, जिसके अंदर सभी मशीनें बिल्कुल नए स्तर की है, बिल्कुल जो मार्केट में ट्रेंडिंग है टेक्नोलॉजी उसके ऊपर बेस्ड है। बच्चे उस AICT आइडिया लैब में जाकर जो मार्केट में रिक्वायर्ड स्किल है उनको डेवलप करते हैं। अभी हमने फिलहाल में ही अगर देखा जाए तो हमने एक अन्वेषण इवेंट होता है जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज करवाती है, उस अन्वेषण के अंदर हमारे बच्चों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्थ रीजन में हमारे बच्चों ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है और उसके अंदर 30 यूनिवर्सिटीज आई थी, 30 यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों ने कॉम्पीट करके फर्स्ट रैंक लेके आना, वो जो हमारे प्रयोग है, हमारे प्रयास है, चाहे वो AICT आइडिया लैब है या और बच्चों के लिए टीचर्स के लिए जो रिसर्च फैसिलिटीज हमने यहाँ डेवलप की है उसके अंदर बच्चे जाके टीचर्स जाके जो काम करते हैं उसी का कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन है।
1: सर, डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: जहां तक बात आती है हमारी फैकल्टीज की, तो फैकल्टीज हमारी इस टाइम पर बड़ी अच्छी है। मैं कहूंगा कि अनपैरेलल्ड मैच है। आप इस पूरी बेल्ट में देखेंगे तो जो शानदार सेट हमारे पास में है फैकल्टीज का, वो शायद ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता हो। अधिकतर सारी फैकल्टीज हमारे पास में वो PhD होल्डर्स हैं और IIT से ग्रेजुएट हैं, NIT से ग्रेजुएट हैं। वो बच्चों के साथ में जो अच्छी स्किल्स हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग देती हैं। और जहां तक बात है बच्चों को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं, बच्चे जो हमारे साथ में पढ़ रहे होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब बच्चे इंजीनियरिंग करता है तो उसके बाद में उसको गेट की तैयारी हम कराते हैं। जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स में नौकरी निकलती है उसमें बच्चे एलिजिबल होते हैं गेट क्वालिफाई करके। तो वो सब करने के बाद में बच्चा जो है, जब यहाँ पर तैयारी उसको मिल जाती है, बच्चे को कहीं बाहर कोई अलग वर्टिकल उसको तलाशना नहीं पड़ता है। पहले क्या होता था कि बीटेक करने के बाद में बच्चा जो है वो इंडस्ट्री का जो गैप है उसको फिल करने के लिए वो दिल्ली नोएडा में जाके ट्रेनिंग किया करता था, पर आज की डेट में हमने इंडस्ट्री से पार्टनरशिप की है और उन इंडस्ट्रीज को हम अपने कैंपस पे लेके आए हैं और वो हमारे कैंपस पर ही बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं। और बच्चा जो वो ट्रेनिंग लेने के लिए पहले बहुत दूर जाया करता था वो आज उसको यहीं पे मिल जाती है, हमारे कैंपस के अंदर वो सुविधा हमने उपलब्ध करवाई हुई है। हमने कई सारी यूनिवर्सिटीज के साथ में MOUs किए हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए हैं। स्टूडेंट रिलेशन यूनिवर्सिटी के साथ में भी हमारे कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम है जहां पर हमारे बच्चे वहां पर जा सकते हैं अमेरिका और अमेरिका के बच्चे यहां पे आ सकते हैं। ऐसे ही हमने कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो फ्रांस की और जर्मनी की है उनके साथ में भी कुछ MOUs किए हैं जहां पर बच्चे स्टूडेंट एक्सचेंज में जा सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ में हमारे बच्चे जो है वो भविष्य की तैयारी करते हैं और एक अच्छे नागरिक बनते हैं, नागरिक के साथ में एक अच्छे टेक्नोक्रेट बनते हैं जो देश की उन्नति में और भागीदारी में एक अच्छे तरीके से सहयोग देते हैं।
1: सर, आज के टाइम में जहां बच्चे ऑनलाइन सीख रहे हैं या AI की हेल्प से सीख रहे हैं, ऐसे में इंजीनियरिंग का भविष्य आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, जहां तक बात है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखने की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक एडेड एडवांटेज है जो पहले बच्चों को नहीं मिलती थी, है ना, अब मिलना शुरू हुई है। तो इसको बच्चे एडेड एडवांटेज के तौर पर लें, नहीं तो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का काम है वो YouTube पे नहीं चल सकता। YouTube पे आप खाली लर्निंग कर सकते हैं, पर अगर आपको जो है टीम वर्क में काम करना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। आपको लैब एक्सपोजर लेना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। आपको और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेना है तो आपको इंडस्ट्री में जाना होगा। तो जो गैप है, जो टीम वर्क और जो मेंटोरशिप है, जो वो टीचर के सामने बैठ के बच्चा अपनी प्रॉब्लम जब रखता है, टीचर उसके ऊपर 1-to-1 उसकी काउंसलिंग करता है, वो सब चीजें यूनिवर्सिटी में ही, कैंपस में ही मिल सकती है, वो YouTube पे नहीं मिलेगी। तो YouTube को बच्चा जो है एक एडेड एडवांटेज ले और उससे ज्यादा कुछ ना, उसकी एक फैसिलिटी है।
1: ठीक है सर, अब आगे बढ़ें और बात करें AI को लेकर, क्या कहना चाहेंगे?
0: AI से तो मैं ये देख रहा हूं पिछले काफी समय से कि AI जो है वो अगर ना हो तो आज के समय में आधे लोगों की जॉब चली जाएगी। लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं AI के ऊपर और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। आने वाले समय में क्या होगा कि जो इंजीनियर्स, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो AI नहीं सीखेंगे, उनके लिए सीखना मजबूरी होगी, नहीं सीखेंगे तो वो शायद कॉम्पीट ना कर पाए अपनी स्किल्स में। क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्किल्स सीख के आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, वहीं पर नॉर्मल स्किल्स के साथ में किसी इंजीनियर ने AI की भी हेल्प ली हुई है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 4x बढ़ जाती है, 5x बढ़ जाती है। तो जब 5x वाला एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री के पास में अवेलेबल होगा तो वो नॉर्मल प्रोफेशनल क्यों लेगी? तो AI सीखना सबकी मजबूरी बनेगी और वो बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि AI जो काम आप नॉर्मली जो है पूरे दिन में करते हैं, एआई उसको 5 मिनट में आपके लिए फैसिलिटेट कर देता है, तो आपका पूरा दिन बचता है, वो पूरा दिन आपके लिए और वैल्यूएबल चीजें करने के लिए बचा हुआ है, आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं।
1: सर, एम्प्लॉयबिलिटी गैप भी आजकल थोड़ा बढ़ चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी गैप इसलिए है कि बच्चा कॉलेज आता है, आज की डेट में थ्योरी पढ़ता है, एग्जाम पास करता है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्जाम पास करना है। इंडस्ट्री एग्जाम पास नहीं मांगती है, इंडस्ट्री मांगती है उसके अंदर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी प्रेजेंटेशंस, उसका डिसिप्लिन, उसके अंदर और वैल्यूज जो इंडस्ट्री में चाहिए होती है वो चीज मांगती है। बच्चा सिर्फ पास होना जानता है, वो गैप हटेगा जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होगी, स्किल एनहांसमेंट की बात होगी, तो ये गैप अपने आप हट जाएगा। हम मोर ओवर जो है फोकस करते हैं, जो आमतौर पर जो लोग फोकस करते हैं वो करते थ्योरी के ऊपर। हमारी जो अप्रोच है सुभारती के अंदर वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो इन्हीं सभी सोच के साथ में बच्चे को हम शिक्षा देते हैं। इंजीनियरिंग शिक्षा जो है वो इन्हीं पद्धति के ऊपर दी जाती है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हम लैब के अंदर टाइम उसका स्पेंड करवाते हैं, तो जब वो स्किल उसकी डेवलप होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तो गैप अपने आप खत्म हो जाएगा।
1: सर, कोई नए कोर्सेज जो अभी स्टार्ट हुए हों उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे?
0: देखिए, हमने कई सारी क्रॉस डिसिप्लिन कोर्सेज को भी यहाँ पर स्टार्ट किया है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जनरेटिव एआई को तो हमने पूरा सारे डिसिप्लिन में हमने डाल दिया है। और आप मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल में हम ऑटोमेशन में आ जाते हैं, मैकेनिकल प्लस ऑटोमेशन आ जाता है। हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के साथ में हम जो ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एम्बेडेड सिस्टम के साथ में आईओटी की बात करते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी जो चीजें हैं ये बड़ा हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए, और हम रेडी हो रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की तरफ।
1: सर, अब बात करें स्टार्टअप्स की या बात करें प्लेसमेंट की, प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
0: देखिए, जहां तक बात आती है प्लेसमेंट्स की, मेरा मानना है प्लेसमेंट्स भी जरूरी है, बट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है और हमारे जो संस्थापक महोदय हैं उनका भी विचार है कि बच्चों को स्किल्ड बनाकर हम बच्चों को नए नए उद्यम जो है वो शुरू करवाएं। स्टार्टअप इंडिया के तहत हम उनसे स्टार्टअप खुलवाएं, उनके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उनकी स्किल्स डेवलप करवाकर उनसे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव, उनके अच्छे अच्छे कोलैबोरेशन करवाएं। उसी क्रम में हमने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल की स्थापना की, हमने स्टार्टअप सेल की स्थापना की, जो बच्चों को आए दिन ये उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है उसके लिए वो रेडी करते हैं। जहां तक बात आती है प्लेसमेंट की, तो बच्चा जो इन तैयारी से बिछड़ जाता है, मतलब कहें तो वो ना तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोई कोर्स करता है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ना वो स्टार्टअप के ऊपर कोई लर्निंग करता है, तो मैं समझूंगा उस बच्चे को तो कम से कम शुरुआत में 1-2 साल नौकरी करनी चाहिए। नौकरी का क्या एनवायरमेंट होता है, अपने अपने कलीग्स को कैसे डील करना है, प्रेशर को कैसे डील करना है, अपने कस्टमर को कैसे डील करना है, फिर वो सब चीजें जो हमारे यूनिवर्सिटीज में उसको फ्री में मिल रही है वो प्लेसमेंट में जाके कंपनीज में वो चीज जब तक नहीं लेगा, जब तक वो एक सफल उद्यमी नहीं बन सकता, एक सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो प्लेसमेंट उन लोगों के लिए जरूरी है जो हमारे यहाँ पर ये स्किल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो स्टार्टअप तो बहुत अच्छा है।
1: सर, आप बात करना चाहेंगे आपकी लीडर फिलोसफी के बारे में?
0: देखिए, मैं सबसे पहले मैं विश्वास करता हूँ कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पीड। जो आपकी दिशा है वो महत्व रखती है, आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं वो चीज सेकेंडरी है। अगर आपने गलत दिशा चूज कर ली और उस पर स्पीड से भागे जा रहे हैं तो वो दिशा आपको गलत गोल की तरफ ले जाएगी। तो अपने आप को, बच्चों को जो मार्केट में इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आज की डेट में एआई का ट्रेंड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मार्केट में है, और कुछ नहीं तो क्या क्या चीज मार्केट में चाहिए, बच्चे उस पर जाएं। और इंजीनियरिंग में कैसे सक्सेसफुल बना जाता है एक करियर के लिए, बच्चे को क्या क्या तैयारी करनी होती है, कम से कम वहां से सीख ले। हम तो सिखा ही रहे हैं, हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अंदर ये सब चीजें सिखाई जाती है, हमारे यहाँ पे स्टार्टअप सेल में ये सब चीजें सिखाई जाती है, रिसर्च का एक पूरा बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर है। उनसे अलग अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो फिर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। उस मेहनत के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको अपने अंदर इम्बाइव करनी होगी, और थ्रू आउट लाइफ ये दोनों चीजें तो आपके अंदर रहनी ही चाहिए, अगर आपको आपकी दिशा और दशा दोनों सही है तो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी कमाल की जानकारी देने के लिए। एंड अब आपसे मैसेज लेना चाहेंगे हमारे यूथ के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए।
0: देखिए, लाइफ में अगर मैं कहूंगा कि इंजीनियरिंग में भी कोई एक छोटा सा कोई शॉर्टकट से कोई आप जल्दी सक्सेस नहीं ले सकते। सक्सेस लेने के लिए आपको डिसिप्लिन होना, अपनी कोर वैल्यूज को कंसिस्टेंटली अपने अंदर मेंटेन करना, जो आपकी अच्छी वैल्यूज है उनके साथ में, और एक रेस्पेक्टफुल एनवायरमेंट में डिसिप्लिन सिंसियरिटी के साथ में अपने काम पर फोकस करना। अगर नौकरी मिलना आपका टारगेट है तो आप गलत दिशा में हैं। नौकरी लेना बहुत आसान है, पर नौकरी पर बने रहना उसके लिए आपको ताउम्र आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, आपको स्किल एनहांसमेंट करने होंगे और वो जरूरी भी है। तो मेरा यही मैसेज आज की युवा पीढ़ी के लिए है कि अपने आप को हमेशा अग्रसर रखें, नई नई टेक्नोलॉजी सीखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। आने वाले 5 साल में एक पूरी दुनिया जो है ट्रांसफॉर्म होने जा रही है एआई की मदद से, तो क्या हमारी पीढ़ी उसके लिए तैयार है? उसके लिए तैयार होना है तो हमें अपनी सोच को, अपने कार्यस्थल को, अपने पूरे इकोसिस्टम को अपने हिसाब से अपने आप को उसके अंदर ढालना होगा। जो उस इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी अच्छी खूबियां हैं उसको हमें इम्बाइब करना होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड अभी जो श्रोता हमें इस वक्त सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप जरूर एडमिशन ले सकते हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। बाकी फिलहाल जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहाँ पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है, और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं।
1: जी जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्हे हैं।
0: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर ट्वेल्थ की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है, जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो, सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है, और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं 12वीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों, वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
1: देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरें तो वो अपने आप को साबित कर सकें। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
0: सर, अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल ट्वेल्थ करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है विजिट के लिए, एक बार बता दीजिए।
1: देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए रिसेप्शन पे, हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
0: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
1: जी जी पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारे लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं आईआईटीज एनआईटीज और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं, वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
0: सर, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
1: देखिए एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए, वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन हो जाता है।
0: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को, उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहां पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे, आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज में मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी के गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनकी हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसके हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।
3: जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करेंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस। आई हैव टेकन माय एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय रिसर्च एट AIU एंड आल्सो प्रेजेंटेड माय बायोमेडिकल बेस्ड स्टार्टअप एट AIU। केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस इज अ वेरी गुड कॉलेज, इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द फैकल्टी हेयर आर वेल एक्सपीरियंस, दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट आउट देयर। The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical-based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
4: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता, वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माई करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है। यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है, जिसमें से एक था मदर डेयरी, which is my dream company. आगे जाकर मैं फूड इंडस्ट्रीज में काम करना चाहती हूँ as a food analyst. ताकि मैं फूड सेफ्टी इंश्योर कर सकूं फॉर अ बेटर इंडिया। ओवरऑल सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर प्लान्स को शेप करने में मेरी हेल्प कर रहा है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जय हिंद जय भारत।
5: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम जानवी है और मैं

0: लेबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस। इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप। हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, ये सब हम अपनी लेबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आएं और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना, और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं। मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।
2: तो अभी आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए, और आप भी आइए केरल उर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए। आप इस साल 12th कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर 12th होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे हम।
3: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए, फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटका थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें, विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now, 9639010313.

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहाँ पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है, और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं।
1: जी जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है, उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्ह हैं।
0: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर ट्वेल्थ की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है, जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो, सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है, और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं 12वीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों, वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
1: देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरे तो वो अपने आप को साबित कर सके। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
0: सर, अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल ट्वेल्थ करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है विजिट के लिए, एक बार बता दीजिए।
1: देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों को जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस, साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए, रिसेप्शन पे हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
0: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन?

0: लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
1: जी जी पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारी लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं, IITs, NITs और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं। वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
0: सर, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
1: देखिए, एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए। वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन, आपका एडमिशन हो जाता है।
0: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को। उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहां पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी के गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनके हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसके हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।
3: जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करेंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस। आई हैव टेकन माय एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय रिसर्च एट AIU एंड आल्सो प्रेजेंटेड माय बायोमेडिकल बेस्ड स्टार्टअप एट AIU। केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस इज अ वेरी गुड कॉलेज। इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द फैकल्टी हेयर आर वेल एक्सपीरियंस। दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट आउट देयर। The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
4: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता, वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माई करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है। यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है, जिसमें से एक था मदर डेयरी, which is my dream company. आगे जाकर मैं food industries में काम करना चाहती हूँ as a food analyst, ताकि मैं food safety ensure कर सकूँ for a better India. Overall, सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर प्लान्स को शेप करने में मेरी हेल्प कर रहा है and I'm proud to be a part of it. जय हिंद, जय भारत।
5: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम जानवी है और मैं BSc फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ।

0: मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ।
1: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस।
0: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है। इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं।
1: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस। इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप। हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना, और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं। मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।
2: तो अभी आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए, और आप भी आइए केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए। आप इस साल ट्वेल्थ कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर ट्वेल्थ होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे हम।
3: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी।

लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह।

0: रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920085।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: Shed Nexus.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: पढ़ाई तो सब जगह होती है, पर एक्सीलेंस का होना भी तो जरूरी है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी इज द रोड टू एक्सीलेंस विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद अ सलूब्रियस एनवायरनमेंट, हाईली एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंट फैकल्टी,
1: 18 कॉलेजेस एंड 220 प्लस प्रोग्राम्स। विजिट www.subharti.org।

0: जय हिंद। कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी मेरठ,
1: अ प्लेस वेयर सोल्जर्स आर बॉर्न टू सर्व द नेशन।
0: वी इम्पार्ट ट्रेनिंग टू यंग एस्पिरेंट्स हु एम टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस टू सर्व द मदरलैंड।
1: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी, जहां कराई जाती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के लिए कली ट्रेनिंग। रिटन एग्जाम्स जैसे NDA, CDS और SSB इंटरव्यूज को भी करें एक बार में क्लियर विद सुभारती डिफेंस एकेडमी।
0: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी उनके लिए जो नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा करना चाहते हैं।
1: तो आज ही ज्वाइन करें। फॉर मोर क्वेरीज यू मे कॉन्टेक्ट 9045954341 एंड 9068899913 और यू कैन ऑल्सो विजिट www.subhartidefense.com।

0: दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुँचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए, बोली जनता बोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा,